मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संबत 1948 के श्रावण मास की तिथि 15, तदनुसार 6 अगस्त 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का।
1: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सौंदर्य बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य मनोज्ञ रहता है, प्राण ही अंगों का रस है। रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चारों ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है। वेदों में सौंदर्य को स्वास्थ्य कहा गया है। सौंदर्य देखकर सभी की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। यह एक जादू है, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती है वो उधर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ये सार्वभौम है। पाप और सौंदर्य दोनों का आपसी मेल नहीं होता। सुंदर आकृति से असुंदर कार्य उत्पन्न नहीं होते। तन का सौंदर्य तो देश और काल की सीमा में ही सीमित है, लेकिन जो सद्गुण है उनका सौंदर्य चारों ओर फैलता है। ये फूल की खुशबू की तरह है जो किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहता, फैलता है और एक समान पूजनीय होता है। जब हम सौंदर्य की उपासना की बात करते हैं तो हम सद्गुणों के सौंदर्य को देखें, उसे महसूस करें, उसे तलाशें।

0: उसे उभरने का मौका दें और सद्गुणों का सौंदर्य वहीं रह सकता है जहां प्रकृति से साहचर्य है, जहां ईश्वर की अनुभूति है। आइए इन विचारों को हम फलीभूत होने दें।
1: चिंतन, अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेह किसान भाई बहन लोकन, हमरा लोकन मिर्चाई खेती आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कर निक आमदनी कर सकें छी। एकर खेती करबाक लेल सबसे पहिने माटिक जांच करा लेबाक चाही, तखन फसलक उपजा मनोनुकूल होयत। हमसब मिर्चाईक खेती बर्ख में दू बेर करैत छी, जकरा गर्मा ओ मुख्य फसल कहैत छी। एखन मिर्चाईक मुख्य फसलक लेल बीया बाग करबाक उपयुक्त बेर अछि, जे जून मास सँ लऽ कऽ अगस्त मास धरि मानल गेल अछि। आओर एकर गाछके खेतमे रोपबाक बेर जुलाईसँ लऽ कऽ सितम्बर मास धरि मानल गेल अछि। बीया पहिने पौधशालामे बाउग कयल जाइत अछि, फेर गाछ भेलापर खेतमे रोपल जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, हमरा लोकनिके सदत मिर्चाईक उन्नत प्रभेदक बीयाक व्यवहार करबाक चाही। मिर्चाईक उन्नत प्रभेद अछि पंत मिर्च 3, कृष्णा, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, NP 46A, सिटी, पंजाब लाल, जवाहर 218, पंत C1, काशी अनमोल, काशी सुर्ख इत्यादि। मिर्चाईक अचार लेल प्रभेद अछि अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत, किंग ऑफ नॉर्थ इत्यादि। एकर संकर प्रभेद अछि अग्निरेखा, BSS 267, कल्याणपुर चमन, कल्याणपुर चमत्कार, AR PH 228 इत्यादि। स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनिके मिर्चाईक बीया के बाउग करबा काल एकर मात्रा पर ध्यान देबाक चाही, जाहि लेल सामान्य प्रभेदक लेल 101.5 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ओ एकर संकर प्रभेदक लेल 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ व्यवहार कयल जा सकैत अछि। खाद ओ उर्वरक रूप में कंपोस्ट 150 से 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम आ पोटास 60 किलोग्राम व्यवहार कयल जा सकैत अछि। मिर्चाईक मुख्य फसिल के लगेबा काल 5 से 5 दूरी 50 सेंटीमीटर और गाछ से गाछक दूरी 45 सेंटीमीटर रखबाक चाही। आ खाद उर्वरक व्यवहार में बेर पर सेहो ध्यान दिएक, जेना खाद उर्वरकक व्यवहार एके बेर नहि करबाक चाही अपितु 2 से 3 खेप में देबाक चाही। कंपोस्टक व्यवहार खेतक जुताई बेर में एके बेर करबाक चाही। संग संग नेत्रजनक 1/3 मात्रा गाछ के खेत में रोपबा से पहिने खेत में दिए और शेष 2/3 मात्रा के 2 बेर में 20 से 25 दिनक अंतर पर व्यवहार करबाक चाही। मिर्चाईक फसिल में कमौनी निकौनी बेर पर ओ ध्यान दऽ कऽ करबाक चाही, जाहि सँ घास पात सब साफ रहे और अनावश्यक खरपतवार में नहीं जमा रहे। एहि अनुसार आ पटौनी पर सेहो ध्यान रखबाक चाही, आवश्यकता अनुसार पटौनी करैत रहबाक चाही। जखन नमी खेत में नहीं बुझबा में आबे तब पटौनी कऽ देबाक चाही। एहि प्रकार ध्यान दऽ कऽ खेती करब तऽ एहन कृषि वैज्ञानिक लोकनिक ई अनुमान छनि जे हरियर मिर्चाईक उपजा 80 से लऽ कऽ 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर सँ भऽ सकैत अछि और सुखल मिर्चाई 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि भऽ सकैत अछि। कहबाक तात्पर्य ई अछि जे मिर्चाईक आधुनिक और उन्नत ढंग सँ खेती कऽ निक आमदनी

0: क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि भऽ सकैत अछि। कहबाक तात्पर्य ई अछि जे मिर्चाइक आधुनिक आ उन्नत ढंगसँ खेती कऽ नीक आमदनी कयल जा सकैत अछि। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का

0: अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है गुर्दा के रोग कारण और निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जेके दास।
2: श्रोताओं, आज डॉक्टर जेके दास से गुर्दा रोग के विषय में हम बात करेंगे। गुर्दा यानी किडनी, तो ये गुर्दा है क्या या किडनी है क्या और शरीर में ये कहाँ स्थित होती है?
3: मनुष्य के शरीर में दो किडनियाँ होती हैं
2: जी,
3: जो एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल से सटे 11 और 12 रिब्स के रिलेशन में रहती, लेकिन कभी कभी जन्म जात एक ही किडनी पाई जाती। इससे मरीज को कोई परेशानी नहीं होती है और वह सामान्य जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि अल्ट्रासाउंड में एक किडनी पाई गई तो मरीज बड़ा विचलित हो जाता है। तो मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो एक किडनी अगर नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। ये किडनी जो है एक तरह का सेक्रेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। पेशाब का बनना किडनी में होता है
2: जी।
3: और एवं इससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी सहायक होते हैं।
2: यानी किडनी का डायरेक्ट संबंध ब्लड प्रेशर के रोग से
3: भी है
2: जी।
3: प्लस एक और भी चीज निकलता है, इससे एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर्स निकलता है जो ब्लड सेल्स बनने में सहायक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि किडनी की बीमारी अगर किसी को है तो उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चलाना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है।
2: डॉक्टर साहब, आजकल देखते हैं कि किडनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है।
3: आज का मनुष्य मशीन पर ज्यादा निर्भर हो गया है, शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया है, सिडेंट्री लाइफ मनुष्य आज लीड कर रहा है। यह एक कारण है। दूसरा कारण खान पान में मिलावट, मेरी समझ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किडनी बीमारी को फैला रहा है। कोई भी केमिकल किडनी के द्वारा ही फिल्ट्रेट होता है। मैंने आपको बताया कि किडनी में पेशाब बनता है
2: तो कोई एक तरह से पूरे शरीर का फिल्टर है।
3: जी हाँ जी, एकदम सही फरमाया, पूरे शरीर का वो फिल्टरिंग मशीन है। तो कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसका फिल्ट्रेशन अल्टीमेटली किडनी से ही होता है। तो केमिकल जो है किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट कर रहा है। आज ज्यादा पैदावार की होड़ में लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, केमिकल किडनी प्रॉब्लम का मुख्य कारण ये है। और दूसरा है कि शुद्ध पेयजल का सर्वथा अभाव।
2: हमारा जो खान पान का जो नियम है, जो हम पहले शुद्ध भोजन उपलब्ध था, शुद्ध जल उपलब्ध था और मिलावट नहीं थी तब किडनी पर उतना असर नहीं पड़ता था, किडनी अपना काम ढंग से करती थी। किडनी में जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं?
3: सर्वप्रथम पानी में, शरीर में पानी का संग्रहण माने पानी का जमना हो जाता है।
2: यानी जब शरीर में पानी जमना शुरू हो जाता है वो
3: बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पैर का निचला हिस्सा अफेक्टेड होता है, उसके बाद आंखों के नीचे इडिमा हो जाता है, मतलब सूजन हो जाती है। अगर चिकित्सा शुरू हो चुकी है तो आदमी यहीं तक लिमिट रहता है और नहीं तो पूरे शरीर में उसके पानी जो है वो जम जाता है। दूसरा है कि पेशाब से खून का आना,
2: ये एकदम महत्वपूर्ण लक्षण,
3: बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। हिमेचूरिया, ऐसे हिमेचूरिया के अनेकों कारण हैं
2: जी,
3: लेकिन किडनी के बीमारी में भी पेशाब से खून आता है
2: जी।
3: मैंने आपको पहले कहा कि किडनी जो है वो रेनिन सेक्रेट करता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है
2: जी।
3: अगर किडनी में बीमारी हो गई है
2: तो रेनिन सेक्रेट नहीं होगा,
3: ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है
2: जी।
3: ये भी मुख्य लक्षण है
2: जी।
3: इसमें जो है पेशाब का कम होना या ज्यादा होना, ये सब भी लक्षण इसके है
2: जी। अच्छा, किडनी के रोग की जाँच कैसे?
3: सर्वप्रथम हम लोग अगर किडनी से कोई पीड़ित मरीज आता है तो उसका जो है खून की जांच उसी की जाती है, जिसमें टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, एंड यूरिन में ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जो बहुत ही

0: महत्वपूर्ण है। सीरम क्रिएटिनिन करते हैं, ब्लड यूरिया करते हैं, उसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ ध्यान देते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या चीज आ रहा है। मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी है, इंट्रावेनस पैलोग्राफी है। इन सब जांचों के द्वारा किडनी के रोग पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि क्या कारण है, किडनी किस रोग से ग्रसित है।
1: जी, और डॉक्टर साहब अंत में हम चाहेंगे कि रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं ये बताइए।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सर्वप्रथम अपने श्रोता को कहना चाहूंगा कि आप शुद्ध पानी का सेवन कम से कम 5 से 7 लीटर अवश्य करें,
1: प्रतिदिन
0: करें। लोग ये कहता है कि पानी ज्यादा पीने से मुझे बीमारी हो जाएगी, नहीं, इस भ्रांतियों को अपने मन में निकालें। आज अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि वो बहुत कम जल का उपयोग
1: करते हैं।
0: इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शुद्ध पानी का सेवन जरूर करें, 5 से 7 लीटर। शुद्ध खाना, हल्का गर्म खाना खाने की आदत जरूर डालें।
1: डॉक्टर साहब, किडनी के रोग के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, हम सोचते हैं कि श्रोताओं को काफी लाभ हुआ होगा, तो स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना गुर्दा के रोग कारण और निदान। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। तो पहले ये देशगान।

गणपति वंदना अभी आपने सुना पंडित राजन मिश्रा एवं पंडित साजन मिश्रा की आवाज़ों में। अब सुनिए हरिहरण के स्वर में ये शिव भजन।

मैं तो शिव की पुजारण बनूंगी। ये भजन अभी आप अनुराधा प्रौढ़वाल के स्वर में सुन रहे थे। एक और भजन अनुराधा प्रौढ़वाल के ही स्वर में।

0: शिवनाथ तेरी महिमा। अनुराधा पौडवाल के इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य स्वर कविता कृष्णमूर्ति एवं मिताली बेसिंग का।
1: Five, one.

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

रामचरित मानस गान अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अब एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 9:50 से 11:00 तक।

11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। उपशास्त्रीय संगीत का प्रसारण समय होगा दिन के 11 बजे। दिन के 12 बजे आप सुनते हैं फिल्म संगीत, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मी गाने। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है 12:30। 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत।

आनंद आप ले सकेंगे 1:15 और 2:30 पर। 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे। 5:40 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ नए फिल्मी गाने।

मैथिली संवाद का प्रसारण समय होगा 6:25। 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गाम घर। किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार। इसका प्रसारण समय होगा 6:55, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:30 पर। 7:47 पर आप सुन सकेंगे जिले की हलचल हमारे पटना केंद्र से।

संसद समीक्षा का समय होगा रात्रि 8 बजे, जिसे आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर, और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:30। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद के प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब समय हो चला है समाचारों का, तो सुनिए पहले संस्कृत में फिर हिंदी में समाचार।

अस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपांत्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयंबतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपांत्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, ओडिशा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।
1: कहा कि भारत में कहानी कहने की

0: महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार
1: और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर

0: पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और मैं हूं मनोज। आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार सा।
1: जरूर, अच्छे बुरे हर काम की नींव हमारे मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता, ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
0: और सुविचार सुनला के बाद उनटो भी इतिहासक पन्ना, इतिहासक पन्ना में उसका तिथि अर्थात 6 जुलाई किया विशेष रूप से 6 अगस्त, हाँ क्षमा कर ले, 6 अगस्त किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नज़र घुमा लीजिए।
1: आज ही के दिन 1945 में जापानी नगर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। 2001 में भारत व ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता हुआ था। 2002 में भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुला लिया था। और 1959 में राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं का जन्म हुआ था। 1944 में अविनाश दीक्षित भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री थे का जन्म हुआ था। 1933 में एजी कृपाल सिंह भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था।
0: तो इछल आजुक इतिहास, इतिहास के बाद हमरा लोकन अगर वर्तमान में आबी तो एखन श्रावण मास चल रहा है और चारू दिस बोलबम के नारा और हरियरी जे छे से पसरल है, भक्तिमय वातावरण सब दिस देखवा में आबि रहा है और रिमझिम फुहार से हो बेसी ठाम पड़ रहा है। दरभंगा और लग पास में ओना पानी का अभाव है एखनों, लेकिन बहुत ठाम वर्षा भ रहा है और वर्षा के जे आनंद से लोग लौ रहा है। तो कार्यक्रम में हम सब गप सप से हो करब, बहुत रास सामग्री अपना श्रोता के लिए अन्य छेन से सब हुनका तक पहुँचेबन, लेकिन हमरा लगे जे ते सब सब पहिने ई कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में अपना लोकन जे छे से मैथिली सुगम संगीत सुनै छी। और एखन सावन मास चल रहा है तो देवाधिदेव महादेवक आराधना सप्तर 24 चल रहा है, तो किया ने हमू सब कार्यक्रमक शुभारंभ में जे छे से एकटा सुंदर सनक ई शिव भजन सुनी।
1: आइए सुनते
0: महेश वाणी।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी हम लोग सुन रहे थे शारदा सिन्हा के स्वर में महेश वाणी, और इसके साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते नजर, यानी कि हालचाल लेकर के उपस्थित हैं मणिकांत जी।
3: नमस्कार। राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संचालन लोक निजी साझेदारी PPP मोड के अंतर्गत है। सरकार एकरा मूर्त रूप देवा के लेल ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में एकटा निजी एजेंसी के चयन कऽ लेलक है। राज्य मंत्रिपरिषद के काल्हि भेल बैसार में इससे संबंधित प्रस्ताव के मंजूरी दऽ देल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में भेल बैसार में 17 प्रस्ताव के स्वीकृति भेटल। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी जनौलनि जे लोक निजी साझेदारी में संचालन के लेल संस्थान के 2 कोटी में बाँटल गेलै। पहिल कोटी मधेपुरा, पावापुरी और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा नालंदा डेंटल कॉलेज अस्पताल शामिल है। ये सब संस्थान पूर्व से राज्य सरकार द्वारा संचालित कैल जा रहा है। दोसर कोटी में 12 एहन संस्थान है जकर निर्माण प्रगति पर या प्रक्रियाधीन है। इनमें समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर आ सुपौल के मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है। कैबिनेट सरकार के सलाह देलक देत और प्रक्रिया तय करवा के लेल सलाहकार के रूप में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र निर्गत करवाक लेल तथा इससे होवे वाला खर्च के लेल 8.27 करोड़ रुपया के स्वीकृति से हो दे देलक है। रेल मंत्रालय RAC श्रेणी में यात्रा करो वाला यात्री के लीलेन आ कम्बल उपलब्ध करेबाक संबंधी अपन निर्देश के एक बेर फिर से दोहरेलक है। सब रेलवे जोन से भेट रहल शिकायत के बाद ई डेग उठल गेल है। मंत्रालय स्पष्ट करित कहलक है जे शिकायत के देखत वही सब जोन के निर्देश देल गेल है कि रेलवे बोर्ड के आदेश के कड़ाई से पालन कैल जाए, जैसे AC कोच में चेयर कार के छोड़ कर जे यात्रा करो वाला यात्री छथि हुनका असुविधा नहीं भ सकन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा काल्हि कहलनि जे RBI अगला वित्त वर्ष के शुरुआत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी करबाक तैयारी कऽ रहल है। पॉलीमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक सनक सिंथेटिक पदार्थ से बनल जात, जाहि मे एकटा मजबूत और लचीला प्लास्टिक फिल्म के इस्तेमाल कैल जात, जाहि पर नोट के छपाई कैल जात। ई नोट कागज के नोट के तुलना में अधिक टिकाऊ आ जल्दी खराब नहीं हुआ वाला नोट के रूप में रहत। राज्य के बजट के एकटा नमहर हिस्सा वृक्षारोपण पर खर्च भ रहा है। राज्य सरकार प्रति वृक्ष लगेबा के लेल औसतन 350 रुपया से बेसी खर्च कर रहा है। सुरक्षा, रख रखाव आ मानव दिवस जोड़ला पर खर्च और बढ़ सकत है। किछ वृक्ष मुफ्त में से बाँटल जा रहा है। एहि तरह के से देखी तो सरकार सालाना 400 करोड़ रुपया वृक्षारोपण पर एखन खर्च कर रहा है। दरभंगा जिलाक जाले प्रखंड के रतनपुर और कछुआ पंचायत में मुखिया क्रमशः सरिता देवी आ वीणा देवी के अध्यक्षता में सहयोग शिविर के आयोजन कैल गेल। रतनपुर पंचायत में आ कछुआ पंचायत में विभिन्न समस्या के समाधान के लेल 3 दर्जन से अधिक लोग शिकायत लक पहुँचल छला। हालांकि कुल 17 लोग लिखित आवेदन देने छला, एहिमे से 1 दर्जन आवेदन के ऑन स्पॉट निपटारा कैल गेल। ओम्हर जिलाक विभिन्न प्रखंड में 32 पंचायत में काल्हि नगर निकाय क्षेत्र के 12 वार्ड में

0: सहयोग शिविर के आयोजन कयल गेल। अलीनगर प्रखंड अंतर्गत लहठा तुमौल सुहत पंचायत के पंचायत भवन एवं अधलुआम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर के अध्यक्षता सहायक निदेशक सशक्तिकरण दिव्यांगजन आशीष अमन कयलनि। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। विश्व स्तनपान सप्ताह के पांचम दिन काल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल भवन में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम में विशेषज्ञ लोकनि प्रसूता माता के आ हुनक परिजन के संग संवाद कऽ स्तनपान के लाभ सामान्य कठिनाई आ हुनका व्यवहारिक समाधान के जानकारी देलनि। एकर बाद चिकित्सक आ नर्स लोकनि मिलकर जागरूकता रैली सेहो निकाललनि। कार्यक्रम के आयोजन प्राचार्य डॉक्टर यू सी झा, अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार आ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूजा महासेठ के नेतृत्व में IAP फॉक्सी आ NNF के दरभंगा शाखा द्वारा संयुक्त रूप से कयल गेल छल। एहि अवसर पर अनेक चिकित्सक आ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ल लोग उपस्थित छलाह। वैज्ञानिक संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश वैज्ञानिक संगोष्ठी के मध्य कहलनि जे आधुनिक नवजात देखभाल में माँ आर शिशु के अनावश्यक रूप से अलग नहि करबाक नीति अपनाओल जा रहल अछि। जन्म के तुरंत बाद माँ के छाती पर शिशु के रखबाक और त्वचा से त्वचा के संपर्क करबाक के दू सँ दुनू के तनाव कम भऽ जाइ छै। स्तनपान के दौरान निकलल ऑक्सीटोसिन आ पॉलिक्रिन माँ शिशु के भावनात्मक जुड़ाव आ दूध बनेबा के प्रक्रिया में सहायता करैत अछि। उम्हर बोन एंड ज्वाइंट वीक के अवसर पर काल्हि बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन आ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में निःशुल्क बोन मिनरल ट्रेसिंग BMD जांच एवं हड्डी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गेल। एहिमे विशेषज्ञ चिकित्सक लोकनि हड्डी के स्वस्थ रखबाक जानकारी देलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 54वां स्थापना दिवस समारोह काल्हि जुबली हॉल में उत्सवी माहौल में आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर भारतीय उच्च शिक्षा परिवर्तन के एक दशक विषय पर परिचर्चा के आयोजन कयल गेल। एहिसँ पूर्व अतिथि लोकनि परिसर स्थित महापुरुष लोकनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण आ श्रद्धासुमन सेहो अर्पित कयलनि। एहि अवसर पर मुख्य अतिथि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा विश्वविद्यालय के स्थापना के इतिहास के विस्तार से जनौलनि आ अपन छात्र जीवन एवं शिक्षकीय कार्य अनुभव के लोकक बीच साझा कयलनि। समाहरणालय दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में कयल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं तीव्र क्रियान्वयन के लऽ कऽ सब बैंक पदाधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं अधिकृत वेंडर लोकनिक संग समीक्षा बैसार आयोजित कयल गेल। एहि संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: मौसम पूर्वानुमान पर
3: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान के सहयोग से जारी 5 से 9 अगस्त 2026 तक का मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावनाएं हैं। वैशाली, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिलों में 5 से 7 अगस्त के दौरान मेघ गर्जन एवं वज्रपात की संभावनाएं हैं, जबकि अन्य जिलों में भी पूरे पूर्वानुमान के अवधि के दौरान ऐसे मौसम परिस्थिति बनी सकती है। इस दौरान में हल्के से मध्य

0: वर्षा होने का अनुमान है। 5 अगस्त के आसपास में शिवहर, सीतामढ़ी तथा पूर्वी पश्चिमी चंपारण में कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं थी। पूर्वानुमान के अवधि के दौरान में अधिकतम तापमान 30 से 36 सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता लगभग 90 तथा दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 65 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। पूर्वानुमान के अवधि के दौरान हवा मुख्य पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है।
1: तो इछल मौसम पूर्वानुमान आ ओहि पूर्वानुमान के अनुसार एखन वर्षा के स्थिति बन रहल है। भ सके जाए से काल्हि तक वर्षा हुए जे जिला सब में संभावना व्यक्त कैल गेल है, कतौ कम कतौ बेसी, लेकिन वर्षा होबा के आसार है। आ वर्षा के आवश्यकता से हो बहुत बेसी है, किया तो आब सौन मास बीत रहले है और एखन तक वर्षा अगर ढंग से नहीं हेतै तो बहुत ठाम जे जेना तेना साइन बाटि के रोपनी भेल है धान के, ओकरा बचेनाइ ओकरा आगा जीवंत रखनाइ जे छै से मुश्किल भऽ जेतै। तैं वर्षा के आवश्यकता, ओकरा अतिरिक्त वर्षा के जल जे छै से अपना सभक भूमिगत जल स्तर के सेहो आगा बढ़बैए ऊँच करैए। तऽ भूमिगत जल अगर नहीं हमरा सबके सही आकलन में हैत तऽ ओकर जे दुष्परिणाम से तऽ एखन हमरा लोकनि देख रहल छी पछिला कए साल सँ, जे बहुत ठाम पेयजल के किल्लत, पेयजल के जे छै से कमी जे भऽ गेल है और दरभंगो सनक जिला में, मधुबनियों सनक जिला में बहुत ठाम एहन ठाम अछि जे तऽ टैंकर सँ पानि पहुँचायल जाइए और टैंकर सँ पानि लऽ कऽ लोक जीवन गुजारा करै छथि, जखन कि तऽ बाढ़ के क्षेत्र ई मानल जाइए सब दिन सँ और पानि के पर्याप्त उपलब्धता एतऽ रहै छै, लेकिन तकरा बादो भूमिगत जलस्तर के नीचा चलि जेबाक कारणे ओकर दूटा कारण छै। एकटा कारण तऽ ई छै जे हमरा लोकनि ओकर वृक्षारोपण के दिस ध्यान नहि दै छियै और जतेक वृक्ष लगेबाक चाही से नहि लगा पबै छियै, लेकिन दोसर कारण जे एकटा छै से जलक अपव्यय, पानि के जे छै से अपव्यय हमसब करै छी, ओकरा जतेक खर्चा हेबाक चाही ताहिसँ फाजिल खर्च करै छियै, ओहिपर ध्यान नहि दै छियै जे ओकर केना संचय कऽ कऽ ओकरा राखी, ओकरा ओकर संचय दिस हमरा सभक एखनो ध्यान नहि जा रहल है, जखन कि आब एतेक स्थिति विकराल सोझामे भऽ रहल है। अहाँ देखबै जे गामक गाम चापाकल सुखा रहल छै और सुखा गेल छै, लोक जे छै से वैकल्पिक व्यवस्थासँ पेयजल कऽ रहल छथि उपलब्ध। तैयो अगर हमसब नहीं चेतै छी तऽ भविष्य के लेल जे छै से बहुत खतरा के घंटी बुझू एक हिसाब से ओहि में आई कि नहीं। और गपशप तो हमसब करते रहब, लेकिन लोकल अपडेट दिस सेहो एक बेर नजर घुमाबी और देखी जे कतौ की सूचना मनोज जी यहाँ तक पहुँचा रहल छथि।
0: आज अगर विमान की बात अगर करे तो सुबह 9:30 पे है मुंबई के लिए, 11:30 पे हैं दिल्ली के लिए, 12:25 पर है कोलकाता, 12:50 पे है दिल्ली, 1:35 पे है मुंबई के लिए, 3 बजे हैदराबाद और 4:35 पे हैं दिल्ली के लिए। फिर रेल की अगर बातें करें तो 8:15 पे है नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति, 12:33 है पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और 7:00 नई दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। अगर बिजली की बात करें तो बिजली की समस्या तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, मौसम के कारण भी या कुछ कार्य के कारण। जो समस्या होने पे आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, जो शहर का नंबर है 77-63-81-87-77, ग्रामीण क्षेत्र के हैं 92-64-45-64-12, बेनीपुर साइड के हैं 76-33-99-78-31। नगर में सफाई से या पानी के लेकर के समस्या हो रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 62-27-77-74-0 पर शिकायत कर सकते हैं।
1: तो इच्छल लोकल अपडेट और ये जानकारी अपने तक हमरा लोकन पहुँचाबै छी, लेकिन सतर्कता जे छै से बहुत आवश्यकता छै, आवश्यक छै। अहूँ जहन ट्रेन या बस आकि हवाई जहाज पकड़ै लए निकलै छी तऽ ओकर की पोजीशन छै से आब चूँकि संचार के माध्यम बहुत तीव्र भऽ गेल छै आओर सभ लगमे सभक हाथमे मोबाइल छै

तो अहाँ ओकर जानकारी लऽ लिअ जे अहाँके गाड़ी या कि विमान समयसँ चलि रहल अइ कि नहि। अगर समयसँ चलि रहल अइ तऽ अहाँ अपना हाथमे किछु समय राखि कऽ अगर अहाँके स्टेशन पहुँचबामे आधा घण्टाके समय लगैए तऽ अहाँ आधा घण्टा आओर फाजिल एक घण्टा पहिने घरसँ निकलू, जाहिसँ कतहु कोनो अहाँके अगर बाधा होइए, जाम छै या कोनो कारणे समय बेसी लागि रहल हइ तऽ अहाँके गाड़ी नहि छूटय, अहाँके विमान नहि छूटय। अहू सब बातपरमे ध्यान जे छै से अपने लोकनि अवश्य दी। गपसप तऽ चलैत रहतै नमस्कार मिथिला कार्यक्रममे, गपक सङ्ग जे छै से किछु मनोरञ्जन हमसब सेहो करैत रहै छी। तऽ आब एकटा जहन सावन मासक चर्चा भेलैए आओर सावनमे सबतरि हरियरी देखबामे आबि रहल हइ, तऽ ओहि हरियरीमे सुन्दर सनक अगर हरियर गीत एकटा हमरा लोकनि जे छै से सुनब तऽ नीक लागत। आउ सुन्दर सनक ई गीत सुनै छी।

0: Tere, शोर।
1: अरे
0: अरे
1: बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: सावन का महीना पवन करे शोर, बहुत सुंदर ये गीत हमरा लोग अखन सुन रहा छोड़ है। और वास्तव में ऋतु अपना तो जतेक से सब ऋतु जैसे एक पर एक ककरो कम ककर नहीं अकनाय छे, लेकिन सावन ये वर्षा ऋतु पावस ऋतु है सेहो एक अद्भुत ऋतु है। और ऐ ऋतु के एक एकर अपन अलग आनंद छे। और ई ऋतु जहन अबै है तो लोग के एकदम वातावरण के से पुलकित पुष्पित कर दी छे। तो ऐ ऋतु में हमरा लोकन एखन चल रहल छी और गपसप अपन ज्ञान परंपरा के करी। भारतीय जे वाङ्मय भारतीय ज्ञानक जे परंपरा है तो बहुत पुरान परंपरा है भारतीय ज्ञान परंपरा। और वैश्विक स्तर पर एकर बहुत रास प्रसार प्रचार छे। और बहुत चीज एहन छे जकर खोज हम ही सब केने छी, जना कि शून्य के खोज हम ही सब को देने छे। और एखन जहन आब नव किछु दिन से युग एले, डिजिटल युग एले, कंप्यूटर के आविष्कार भेले, तो कंप्यूटर में सबसे बेसी से तुकबंदी ओकरा मिलाकर भेले जे सबसे बेसी जे कोन भाषा के कंप्यूटर बुझ रहल है तो ओहिमे संस्कृत एले। संस्कृत ओकरा लेल से बहुत बेसी कारगर भेले। तो हमरा लोकन के जे ज्ञान परंपरा है से बहुत पुरान है, वेद पुराण बहुत रास एहन चीज है जकरा से ज्ञान हमरा लोकन स्वयं तक ग्रहण करबे केलहुँ हैं। और विश्व के आनो लोक ऐ ज्ञान के जे छै से लऽ कऽ आगा बढ़ला है, वो विज्ञान के क्षेत्र में होए आकि आने दोसर क्षेत्र में साहित्य संगीत सब क्षेत्र में हमरा लोकन जे छै से आगा बढ़ित रहलहुँ हैं।
1: ये बात सही है मणिकांत जी कि भारतीय चिंतन केवल आध्यात्मिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, मानवता और प्राकृतिक संरक्षण, सामाजिक समरता और विश्व कल्याण पर आधारित है। वर्तमान समय में भी जब विश्व युद्ध, हिंसा, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक असमंजस जैसी समस्याएं से जूझ रहा था, तब भी भारतीय चिंतन परंपरा पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक बन गई थी।
0: भारतीय चिंतन के जो परंपरा रहल है से ठीक है अहाँ कहलूँ हैं जो बहुत पुराने और बहुत सुदृढ़ है। चिंतन के परंपरा में एक से एक ऋषि मुनि और वाङ्मय तो उपलब्ध है। खासकर जे फिलॉसफी छे, जे दर्शन छे, तो वो दर्शन के जे छे से इठम एक टा बहुत नम्हर जे छे से ई रहले है सीरीज जकाँ रहले है। बहुत दार्शनिक भेला है जे अपन अपन दर्शन से जे छे से केहनो विकट से विकट परिस्थिति में हमरा सबके एकदम धैर्य धारण करवा के जे छे से केना कह सकै छी या कोनो परिस्थिति से केना बाहर भ सकै छी, ई सबटा भारतीय चिंतन में जे छै से समाहित है ओहि सब चीज। और पहले कहलहुँ हैं जे ज्ञान विज्ञान जतेक चीज छै ओहि सबहक सार जे छै से हमरा सबहक शास्त्र में पहिने से अहाँ लिय ना, जना एखन विमान एते उड़ रहले है तो पुष्पक विमान कहिया एतौ भेले, कतेक पुराण बात छै। और शास्त्र पुराण में जे छै से हमरा सब

0: देखै छी जे रामायण कालमे पुष्पक विमान छलै या ओहिसँ पहिनेहो पुष्पक विमानके बात अबै छै, तऽ हमसभ बहुत पहिलेसँ जे छै से सुदृढ़ रहलहुँ हेँ एहि मामलामे।
1: आ देखू तऽ भारतीय चिन्तनके मूल आधार वासुदेव कुटुम्बकम, जिसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, यह विचार जाति धर्म भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी मनुष्य को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। आज वैश्वीकरण के दौर में यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति और भाईचारा को भी बढ़ावा देता है।
0: वसुधैव कुटुम्बकम जे छै से एकटा बहुत नमहर मूल मंत्र छै, और ओहि मंत्र के अगर अहाँ अपना में आत्मसात कऽ लै छी तऽ अहाँके दुनिया में कतौ कोनो असुविधा नहि अछि, और हर व्यक्ति अहाँके अपन परिवार के सदस्य जहन नजर आबऽ लगैए तऽ ककरोसँ दुश्मनी किया हैत अहाँके नहि भऽ सकैए, सब सङ्गे मित्रता अहाँके होइत रहत।
1: और देखे तो भारतीय संस्कृति सत्य अहिंसा दया करुणा क्षमा और सेवा जैसे मूल्य पर बल देती है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनके विचार ने विश्व के अनेक नेताओं और आंदोलन को प्रेरित किया। आज भी शांतिपूर्ण समाधान और संवाद की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। भारतीय चिंतन प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देती है। नदी वृक्ष पर्वत और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भावनाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।
0: प्रकृति के संगे जो प्रेम के बात है से आदिकाल से अपना सभक उतर रहल है। वृक्ष के हमरा लोकन जना कि पीपर के गाछ है, तो पीपर गाछ के हम सब पूजा करी छी। पीपर सबसे बेसी जे छै से ऑक्सीजन हमरा सबके दैए, तो हम सब एहन अपना परंपरा में पहले से ओकरा एही ढाप से आत्मसात कर लेने छी जे ओकरा से दूर हम नहीं भ सकै छी। तुलसी, हर अंगना में तुलसी अहाँ के भेट जाए। तुलसी जे छै से प्राण वायु के जे छै से एकटा बहुत नमहर साधन छै, और तुलसी जतय छै ततय जे छै से ऑक्सीजन के कोनो कमी नहीं होइ छै। तो हम सब प्रकृति से बहुत लग में छी। जीव जंतु संगे जे अहाँ देखियो, सांप एतेक खतरनाक प्राणी छै, आ लेकिन ओकरा हम सब पूजा करै छी। विषहरा पूजा एखनो नागपंचमी, मौना पंचमी बीतल है, नागपंचमी आबि रहल है, तो 15 दिन तक जे छै से एहिठाम विषहर के पूजा होइत रहै छै, और नाग के हम सब पूजा करै छी। बहुत ठाम अहाँ के नागडीह भेटत, सांप के नहीं मारे के जे छै से अपना सबक ओतय चलन छै। ओकरा हम सब श्रद्धा भाव से देखै छी, जहन कि एते खतरनाक जीव छै। और ओहिसँ ऊपर चलू तऽ सिंह के लऽ लिअ अहाँ, बाघ सिंह बहुत खतरनाक प्राणी छै, और ओकरा पूजा में जे छै से दुर्गा के वाहन के रूप में हम सब लै छियनि, और दुर्गा काली के वाहन के रूप में, अगर भगवती के वाहन के रूप में, तो उनको हम सब पूजा करते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव या अन्य जीव जंतु संगे कतेक बेसी हमरा सब जे छै से जुड़ल छी, और से सबटा अध्यात्म के हिसाब से जुड़ल छी, और ओहिमे बहुत रास वैज्ञानिकता छै। तो ई चीज जे बात पर चर्चा अहाँ शुरू केलहुँ हैं मनोज जी, से वास्तव में भारतीय वाङ्मय जे छै से बहुत समृद्ध छै, और ककरोसँ बेसी आगा, ककरोसँ बेसी पुरान सभ्यता संस्कृति एतक रहलैए, और ओकर लाभ आनो देशक लोक लै छथि। हमसब जते लाभ लै छी से तऽ लैते छी, लेकिन हमरासँ बेसी लाभ
1: आनो बाहरके लोक लै लेते हैं। इसी के साथ देखे तो आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पूरी मानवता के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है, तब भारतीय जीवन दृष्टि टिकाऊ विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य का मार्ग दिखाती है। भारतीय दर्शन कर्म कर्तव्य और आत्मानुशासन पर विशेष बल देती है। भागवत गीता का संदेश है, हम बिना फल के चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, की प्रेरणा देती है। यह सिद्धांत आज के व्यवसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी नैतिक विकास होना चाहिए।
0: शिक्षित है, साक्षर है, दो बात है।

0: अगर अहाँ साक्षर छी तऽ अहाँके अक्षर चलैए, अहाँ पढ़ि सकै छी, अहाँ बुझि सकै छी, लेकिन अगर अहाँ शिक्षित छी तऽ एकर मतलब अहाँमे ज्ञान अइ। तऽ एहिठाम ज्ञानके जे छै से परम्परा रहलैए, आओर ज्ञान एक दोसराके गुरु शिष्य परम्परा, गुरुकुलके परम्परा रहलैए, आओर ओहिठाम लोक ज्ञानके अध्ययन करैत रहल हइ। तब ठीके अहाँ कहलहुँ जे अर्थकरी विद्यापरमे एहिठाम बेसी काल ध्यान नहि देल गेलै, एहिठाम रही जे हमसभ अगर ज्ञानी भऽ जायब तऽ सभचीज हमरा ओहिना प्राप्त भऽ जाएत। तऽ जड़िमे जे छै से लोक जड़िके बातके बुझऽके कोशिश केलकै आओर ज्ञानके अर्जनमे लागल रहल भारतीय वाङ्मय, भारतीय जे बौद्धिक क्षेत्रके बाद से ओ सबसँ महत्वपूर्ण कड़ी ओकर ज्ञान रहल है। आओर ज्ञानमे हमरा लोकनि बहुत रास एहन मुनि ऋषिके नाम अहाँ लऽ सकै छी या महापुरुषके नाम लऽ सकै छी, जे जेना गौतम बुद्ध भेलाह, विवेकानन्द छथि, एहि हालके एहिसँ पहिने अगर चली तऽ बहुत रास ऋषि एहन छथि, गौतम कनाद, कौटिल्य, ईसभ जे छथि से बहुत रास ऋषि मुनि छथि जिनकर बहुत भारतीय वाङ्मयमे हुनकर प्रात्मने देन छनि आओर हुनकर सभक भण्डार भरऽमे हुनकर सभक बहुत रास महत्वपूर्ण योगदान छनि। तऽ एखनसँ लऽ कऽ आओर आइके युग तक आइयो बहुत लोक एहन छथि जिनका हमसभ नहि जनै छियनि, नहि चिन्ह पबै छियनि, लेकिन ओ अपन योगदान समृद्ध करऽमे, वाङ्मयके समृद्ध करऽमे लागल छथि आओर योगदान दऽ रहला है। तऽ ई कुल मिलाकर अगर कही तऽ भारतीय जे ई परम्परा अइ ज्ञानके से बहुत पुरान अइ आओर बहुत समृद्ध अइ। आवश्यकता ई छै जे एकर हमरा सभ अनुसरण करी, एकरा जोगाके राखी आओर एकरा महत्वके बुझी, कि नहि?
1: बिल्कुल सही है कि हम लोग इसको संभाल के जितना रखेंगे आगे भविष्यमे हमारे आने वाले पीढ़ी को काम ही।
0: हाँ, हाँ,
1: इसके साथ हम लोग भी चलते एक प्यारा सा गीत और
0: अवश्य अवश्य अवश्य
1: और भी बातें रखेंगे।
0: सुंदर सुंदर सनक ई गीत सुनी हमरा लोकनि।

एखन हमरा लोकनि ई गीत सुनि रहल छलहुँ हेँ। आओर गीतक सङ्ग सङ्ग किछु किछु जे छै से चर्चा परिचर्चा सेहो होइत रहबाक चाही। तऽ देखू, उद्यमिताके क्षेत्रमे स्त्रीगणक जे भागीदारी अइ से बहुत तेजीसँ आगाँ बढ़ि रहल हँ। तऽ हमरा लोक

0: ओहिपरमे आओर ओहिमे सहयोग दी आओर ओकरा आओर आगाँ लऽ चली, ई हमर सभक कर्तव्य बनैए कि नहि। आब कार्यक्रमक समय जे सेहो बान्हल अइ तऽ नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक अजुका जे समय अइ से सम्पन्न भऽ रहल अइ, तऽ मणिकान्तके
1: आओर मनोजको दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार मिथिला।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222281। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
7: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे सभी कार्यक्रमों को आप अपने स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो आज ही और अभी डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का, तो सुनते हैं समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
8: उपजा नहीं है तो।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
5: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
4: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
6: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
7: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का

0: काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि

0: से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: ज़ाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड पीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान मंसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निजाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुज पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने आबनाए हुरमुज के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदाम पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैन अवी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है और बजाहिर अमरीका की तरफ

0: इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाज फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को यह सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस, मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामनिहाद यौम इस्तेहसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारिजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग, दिखावे और बनावटी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नामनिहाद यौम इस्तेहसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हजारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945 के आखिर तक 1,40,000 हलाकतें हुई थीं। आज सुबह पीस मेमोरियल पार्क में मुनक़िद एक तकरीब में एक सानेह को याद किया गया और इसकी याद में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। इस यादगारी मकाम पर एक दस्तावेज को भी रखा गया जिसमें 3,53,639 मुतासरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को खत्म करने की अपील की जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर एटमी हमला किया गया था जिसके बाद दूसरी जंगे अजीम खत्म हो गई थी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया जबकि झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-3 से बराबरी के बाद शूटआउट में शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, चाहे जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से माफी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असेंबली का मानसूनी इजलास कबल अज वक्त गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्जाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफे पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अक्वामी खबरें इस तरह हैं, अबनाए हुरमुज में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी मॉडल की मंजूरी दी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में होने पर दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और मौसम विभाग की आज बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और सीवान समेत 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी PPP मॉडल की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए PPP मॉडल को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
1: 7 निश्चय 3 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आलोक में 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित को संचालित किए जाने हेतु निविदा के माध्यम से ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में चयनित पावर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड PwC को लेटर ऑफ अग्रीमेंट निर्गत करने और इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि 8,27,03,00 रूपए की स्वीकृति दी गयी।
0: कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। अपर मुख्य

0: सचिव श्री चौधरी ने बताया कि इन अदालतों के लिए 171 पद सृजित किए गए हैं।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान के सफल आयोजन के लिए 6,12,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102 करोड़ रुपए और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मी के आश्रित परिवार का कोई सदस्य अगर पहले से सरकारी सेवा में है तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, बल्कि यह आकस्मिक आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सीमित राहत है। न्यायाधीश कुमार मनीष की एकल पीठ ने इस मामले में दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास अधिकारी AEDO परीक्षा घोटाला मामले में मुंबई से एक युवक रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा के कंकरिया गांव निवासी यह युवक मुंबई के भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर बार्क में तकनीकी सहायक है। गिरफ्तार युवक पर भर्ती परीक्षा के दौरान उत्तर कुंजी लीक करने का आरोप है। EOU की टीम आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना आ रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। इसलिए IT एक्ट के तहत मिलने वाला कानूनी सुरक्षा कवच उन पर लागू नहीं होता है। प्रदेश में गन्ना आधारित उद्योग में निवेश में बढ़ोतरी के मकसद से शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि यह पोर्टल बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक एक ही मंच पर भूमि अनुदान, परियोजना स्वीकृति, ऑनलाइन आवेदन और निगरानी जैसी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना पर 70 करोड़ रुपए तक आधार अनुदान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उच्च शिक्षा तथा विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए नामित किया गया है। वहीं मुख्य सचिव और गृह विभाग के सचिव को सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। परिषद का मुख्य उद्देश्य

0: पड़ोसी राज्यों के साथ चल रहे दशकों पुराने विवादों को सुलझाना है। प्रदेश में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत समायोजन और पारस्परिक तबादले के लिए 61,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर कल से 9 सितंबर तक जिला प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति की बैठक, शिक्षक वार समायोजन, समानुपातीकरण, सूची का प्रकाशन और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच पात्र शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत 17 से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। कल से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सीवान जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों जहानाबाद, अरवल, पटना, औरंगाबाद और नवादा समेत आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
5: दिनांक 6 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सबसे अधिक 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण आज 8वें दिन भी साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लगातार बारिश होने से हालात और खराब हो गए हैं। पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अनुसार मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर कल हड़ताल समाप्ति के लिए पटना की महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई कर्मियों की मांगों के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी है। जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छठी कक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन

चरणों में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि परीक्षा में कुल 165,609 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफलता का प्रतिशत 73.99% रहा। यह परीक्षा 8 से 22 जून तक सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने सुपौल और नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन आज से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। प्रदेश में कुश्ती और मुक्केबाजी के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही खेलो इंडिया के तहत राज्य में वुशू के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभिन्न खेल संघों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 52वीं राज्य जूनियर

0: अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। प्रदेश में कुश्ती और मुक्केबाजी के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही खेलो इंडिया के तहत राज्य में वुशू के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभिन्न खेल संघों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 52वीं राज्य जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राज्य टीम का चयन 9 और 10 अगस्त को होगा। भागलपुर जिले में प्राकृतिक विधि से धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत 3 क्लस्टर बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार ये क्लस्टर सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर, जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी और गौराडी प्रखंड के तरछा दामचक और सोनाडी सज्जोरी में स्थापित किए जाएंगे। अंत में अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य कैबिनेट के फैसले से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, निजी साझेदारी में संचालित होंगे 16 मेडिकल कॉलेज। प्रभात खबर प्लास्टिक नोट पर लिखता है, गलेंगे न फटेंगे, अप्रैल मई से आपके हाथों में होंगे प्लास्टिक नोट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्री पद का खतरा झेल रहे दीपक विधान पार्षद बने। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, कोसी उफनाई, सहरसा में 12 से अधिक घर नदी में समाये। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी मॉडल की मंजूरी दी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में होने पर दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और मौसम विभाग की आज बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और सीवान समेत 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों, बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें, समूह में न खड़े हों, रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशु पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
3: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
2: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
3: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
4: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

फिर हम हाजिर हैं अंजुमन लेकर। सामीन, 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर आइटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसके धमाके के फौरन बाद हजारों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जो लगभग 70,000 से लेकर 1,00,000 से भी ज्यादा बताए जाते हैं। बम का नाम तो लिटिल बॉय था,

0: इस बात को बताती रहेगी कि इस तरह की हालनाक मौतें हमारे लिए या हमारी दुनिया के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही सामीन, वक्त का इशारा हुआ जाता है कि रुख करते हैं आज की खास पेशकश कलाम शायर की जानिब और समाअत करते हैं आफताब आलम से उनके खूबसूरत कलाम।
1: गजल का मतला अर्ज कर रहा हूँ।

है मुसलसल रंजो गम का सिलसिला मेरे लिए, है मुसलसल रंजो गम का।

खिलाकत से मिला क्या ऐसे लोगों को, भला बेजा हिलाकत से

امین قربت سے یہی امید ہے مل جائے گی تسکین قربت سے یہ

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी

0: आवाज आपके साथ।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। साहित्य, संस्कृति और कला केर उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा की अगली प्रस्तुति फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए पहला गीत सुनते हैं फिल्म परख से। स्वर लता मंगेशकर का, शब्द शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन सलिल चौधरी का।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुर्माना में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फिल्म आयासावन झूम के। इस फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर को सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लेकिन इससे पहले आइए एक छोटा सा अंतराल लें।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

फिल्म सबक का गीत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा था उषा खन्ना ने। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म निगाहें से।

मोहम्मद अजीज को अभी आप सुन रहे थे फिल्म निगाहें में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म सावन को आने दो से। स्वर जसपाल सिंह एवं कल्याणपुर मित्रा का और संगीत गौहर कानपुरी, धुन बनाई है राजकमल ने।

0: जसपाल सिंह एवं कल्याणी मित्रा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावन को आने दो में। गौहर कानपुरी की शब्द रचना थी और संगीत दिया था राज कमल ने। अगला गीत सुनिए फिल्म आई मिलन की रात से, अनुराधा प्रौडवाल एवं मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। इससे पहले आइए सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं।

हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

फिल्म क्रिएचर में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। गीत और संगीत टोनी कक्कर का। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में कुछ गाने। अग्निसाक्षी का ये गीत है जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने और लिखा है समीर ने।

उदित नारायण को अभी आप सुन रहे थे सात रंग के सपने में। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साथी से। स्वर दिया है अनुराधा प्रोडवाल ने, समीर की गीत रचना है और संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म अग्निसाक्षी का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति एवं बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए

0: अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम

0: संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ।

जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें। पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओ, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओ, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के

0: कार्यक्रमों का। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Jackpot. अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य

0: विधिवत किया जाएगा।
1: महाराज की
2: जय हो।
1: महाराज की
2: जय हो।
1: महाराज की
2: जय हो।
3: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
4: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
5: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
3: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
5: अच्छा।
3: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
5: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
5: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
3: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
5: ओह।
3: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
5: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
3: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
5: ओह।
3: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
5: अच्छा।
3: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
5: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
6: जी।
5: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
3: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
5: जी।
3: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
5: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है।

0: आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
1: कमजोर भी हो गई है।
0: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
1: ठीक कह रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
0: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
1: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटी, जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना।
2: हाँ।
0: शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते, तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
3: मैं तो वाह

0: अरे
1: हाँ देखो चिड़िया तोते अरे सुंदर है।
0: अरे सुन तो,
1: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
0: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने,
0: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
0: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आपने सुना। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अथर्व से। गायक कलाकार हैं आशी टिटोरिया, गीत राजा रमेश बर्रा एवं राजस का, संगीत श्री चरण पाकला का।

मेरा दिल थक थक करता है और मैं खिंची खिंची चली आती हूँ। कदम मेरे तेरी ओर बढ़ते जाए, तेरे सपनों की मलिका हूँ मैं, अब तो ये मान ले मेरी बातों पर, अब तो तू कर ले यकीन। मैं आसमां से जमीन पर आई हूँ प्यार की सौगात लेकर, वो भी सिर्फ तेरे लिए। जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी मैं साथ तेरा, निभाऊंगी मैं साथ तेरा।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एनिमल का गीत। गायक कलाकार हैं राघव चैतन्य एवं प्रीतम, गीतकार मनोज मुंतशिर एवं संगीत अमन का है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनिए बैड बॉय का ये गीत। गायक कलाकार हैं हिमेश रेशमिया, संगीतकार और गीतकार भी हिमेश रेशमिया ही हैं।

सुनिए फिल्म अकेली का ये गीत रोमी की आवाज़ में। शब्द रचना मुकुंद भालेराव की, संगीतकार हैं मेहुल व्यास।

फिल्म भोला से जावेद अली के स्वर में ये गीत आइए सुनते हैं। बोल इरशाद कामिल के, संगीत रवि बसरूर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म भोला से ये गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

बहनों इसी देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों हर महिलाओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। सही पोषण से शरीर को ऊर्जा मिलती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और कमजोरी या खून की कमी जैसी बीमारियां दूर रहती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और उम्र के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करता है। बहनों हम महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जावान जीवन के लिए सही पोषण और जीवन शैली का संतुलन बहुत जरूरी है। महिलाओं के शरीर को उम्र और जीवन चक्र के अलग अलग चरणों जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था, जीवन के निम्नलिखित अवस्थाओं में उन्हें अलग अलग डाइट और डेली रूटीन की जरूरत होती है। महिलाओं को अपनी डेली रूटीन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पानी पीना, थोड़ा समय खुद को शांत रखना यानी ध्यान करना, प्रार्थना करना, हल्का व्यायाम या वॉक करना चाहिए। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन में आपको ऊर्जावान और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। बहनों आप अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए हुए अपनी आहार संबंधी जरूरत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उचित पोषण आप

को हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने में मदद करता है। बहनों, आपको मौसम के अनुसार फलों का चुनाव, सब्जियों का चुनाव, साबुत अनाज और प्रोटीन भरपूर मात्रा में आहार लेना चाहिए। साथ ही कम वसा और प्रोटीन डेली उत्पादक भी शामिल करना चाहिए। मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। अच्छे पोषण आहार आपके शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है। संतुलित भोजन खाने से आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ महसूस करेंगे। बहनों, यदि आप गर्भावस्था में हैं तो कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयोडीन, नमक जरूर खाएं। पौष्टिक, संतुलित और ताज़ा भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 5 से 6 बार जरूर खाएं। आहार में आप हरी सब्जियां, ताजे फल, दाल, दूध, दही, अनाज और भरपूर मात्रा में पानी अवश्य पिए, ताकि आपको और आपके परिवार, साथ साथ आपके शिशु, सब कोई स्वस्थ रहें। क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। क्योंकि हर घर में चाहता है शिशु आए, उसका इंतजार होता है। तो शिशु स्वस्थ तभी होंगे जब आप अच्छे से भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार लेंगे। तो इस समय आप अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहनों, साथ ही गर्भावस्था में डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई दवा लेनी चाहिए। अगर आपको पेट दर्द, चक्कर आना या किसी प्रकार की समस्या हो तो आप डॉक्टर से जरूर मिले, उनसे राय मशवरा लेकर ही आप कोई भी दवा खाएं। बहनों, हर महिलाओं को उम्र के पड़ाव के साथ खुद को सेहतमंद रखने के लिए आपको संतुलित आहार, खान पान, रोजाना हल्का व्यायाम, पर्याप्त नींद और नियमित हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। आप कम से कम साल में 2 बार तो जरूर अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। इसके साथ ही बहनों, आप मानसिक तनाव से दूर रहें। हमारा जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से उस विषय पर ज़्यादा सोचने की और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हर परेशानी को हम आराम से सुलझा सकते हैं। इसीलिए खुद को सबसे पहले स्वस्थ रखना है, उसके बाद हर परेशानी चली ही जाती है। कोई भी चीज़ एक जगह ठहराव नहीं होती। जीवन में खुशी और समस्या आते रहते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो इसका हल निकाल पाएंगे। तो आप अपना ख्याल जरूर रखें और साथ ही अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। इस मौसम का आनंद लेते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त का यह महीना बेहद खास है और बहनों, 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। एक माँ के रूप में शिशु का पहला गाढ़ा दूध यानी अमृत देना उसके जीवन की सबसे बड़ी नींव है। हम सभी इसके महत्व को जानते तो हैं, लेकिन आज की समाज में इसे लेकर कई तरह की गलत फहमियाँ और हिचकिचाहट देखने को मिलती है। लेकिन बहनों, एक माँ का दूध सिर्फ बच्चे की भूख नहीं मिटाती, बल्कि उसके पूरे जीवन को निरोगी और सुरक्षित बनाने का पहला वरदान होता है। यह माँ और बच्चे के बीच का वो अनमोल बंधन है जो शिशु को बीमारियों से बचाता है और माँ को एक अनोखा आत्मसंतोष देता है। माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के जीवन की पहली ढाल और सबसे बड़ी पहली खुराक है। यह न सिर्फ शिशु को बीमारियों से सुरक्षा देता है, बल्कि माँ की सेहत और सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए सही समय पर अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं और एक स्वस्थ कल की शुरुआत अवश्य करें। बहनों, माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का दिया सबसे बेहतरीन और शुद्ध पोषण है। आइए मिलकर इस स्तनपान सप्ताह में यह संकल्प ले कि हम हर नई माँ को सही जानकारी देंगे और उनका संकोच मिटाकर उन्हें सबसे पहला कर्तव्य बताएंगे कि माँ का दूध अवश्य पिलाएं। इसकी शुरुआत आप अपने घर और आसपास की महिलाओं को सही जानकारी देकर कर सकती हैं। जब हम सब मिलकर जागरूक होंगे तो हमारा कोई भी बच्चा कुपोषण या बीमारी का शिकार नहीं होगा। सही पोषण से ही बच्चों को और माताओं दोनों का भविष्य उज्जवल बनेगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और सशक्त होगी। बहनों, जब हर बच्चा स्वस्थ होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो बहनों, हम लोग जानते भी हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ माँ की सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि माँ की भी सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। तो हम सभी को जानकारी तो है, लेकिन इसकी जानकारी नई पीढ़ी की बच्चों को, जो नई माताएं बनती है, उन्हें थोड़ा कम जानकारी हो सकता है, झिझक भी होती है। तो इस झिझक को दूर करना है और हर महिलाओं को, हर माताएं जो आज की नई माताएं हैं, उन्हें समझाना होगा और उन्हें स्तनपान कराने के लिए जागरूक करना होगा। बहनों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता।

जैसलमेर हमारे देश भारत के राजस्थान प्रांत का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ जनवरी से मार्च तक ठंड पड़ती है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं अप्रैल से जून तक धूप रहती है और तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस मौसम में जब सूर्य सिर पर होता है और उसकी किरणें थार के रेगिस्तान पर पड़ती है तो सुनहरी रेत के कणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सोने के कण बिखरे पड़े हों। ऐसे मनमोहक दृश्य का

आनंद लेने के लिए पर्यटक भीषण गर्मी की परवाह भी नहीं करते और यहाँ घूमने आते हैं। पर अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून और ठंड के बीच के मौसम में यहाँ आप ठंड और बारिश दोनों तरह के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। संकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलिशान भवन और हवेलियां सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती है। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहां पैदल घूमते हुए मरुभूमि के इस सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। जैसलमेर राज्य भारत के मानचित्र में ऐसे स्थान पर स्थित है जहां इसका इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। सदियों तक आवागमन के सुगम साधनों के अभाव में यह शहर देश के अन्य प्रांतों से लगभग कटा सा रहा। इस कारण बाहर के लोगों को जैसलमेर के बारे में काफी कम जानकारी रही है। सामान्यतः लोगों की कल्पना में यह स्थान धूल व आंधियों से घिरा रेगिस्तान मात्र है, पर वस्तु स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास एवं काल के थपेड़े खाते हुए भी यहाँ प्राचीन संस्कृति, कला, परंपरा व इतिहास अपने मूल रूप में विद्यमान रहा तथा यहाँ के रेत के कण कण में पिछले कई सौ वर्षों के इतिहास की गाथाएं भरी हुई है। जैसलमेर ने मूल भारतीय संस्कृति, लोक शैली, सामाजिक मान्यताएं, निर्माण कला, संगीत कला, साहित्य, स्थापत्य आदि के मूल रूपों को बनाए रखा है। तो यदि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, जिनके साथ भी आप जा रहे हो, एक बार जैसलमेर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को मोहित करने में कभी विफल नहीं होते हैं। आपके लिए शहर में और उसके आसपास कई आकर्षण हैं, चाहे वह जैसलमेर किले और पटवों की हवेली की भव्यता हो, जैन मंदिरों की शांति हो, या खरीदारी के स्थानों की जीवंतता और दिलचस्प रेगिस्तानी त्योहार हो। इतना ही नहीं, रेगिस्तान में जीप टूर और ऊंट सफारी आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए काफी है। जैसलमेर शहर चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो दूर से पीले रंग में चमकता है, क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियाँ, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बड़ी मूछों और रंग बिरंगी पगड़ी पहने पुरुष, सितारे और शीशे लगे लहंगे पहने हुए महिलाएं, पीले बलुआ पत्थर से बने जाली और झरूखे की वास्तुकला, चमड़े की जूतियों की असंख्य दुकानें, ब्लॉक से छपाई किए हुए स्कार्फ और छोटी वस्तुओं पर कलाकारी, यह सब चीजें पर्यटकों को अपने आप में डुबाकर पुराने समय में ले जाती हैं। एक परिसर में पांच छोटी हवेलियों का एक शानदार समूह पटवों की हवेली जैसलमेर में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे ऊपर आती है। खिड़कियों और बालकनियों पर जटिल नक्काशी और उत्तम वॉल पेंटिंग और शीशे का काम हवेलियों की भव्यता को बढ़ाते हैं। इस विशाल हवेली में हवादार आंगन और 60 बालकनी है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट नक्काशी और इसके आकर्षण को बढ़ाती है। हवेली के संग्रहालय में आपको पटवा परिवार से संबंधित पत्थर के काम और कलाकृतियों का दुर्लभ संग्रह भी मिलेगा। शाही परिवारों के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ एक उद्यान परिसर बड़ा बाग राजस्थान के अतीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कब्रगाह के प्रवेश द्वार हैं। बगीचे में कई भूरे रंग की छतरियां हैं, जो कि गुंबद, चौकोर, गोलाकार या पिरामिड के आकार की बनी हुई है। आप यहां बगीचे में टहल सकते हैं और पक्षियों को देखकर इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित और एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। भारत के इस सबसे बड़े जीवित किले में लगभग 5000 लोग रहते हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पीले बलुआ पत्थर के किले में विभिन्न द्वारों, गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल से प्रवेश किया जा सकता है। आखिर में आप बड़े प्रांगण में जाएंगे, जिसे दशहरा चौक कहा जाता है। किले के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, 5-स्तरीय मूर्तिकला, महरवाल पैलेस और किला संग्रहालय जैसे कुछ प्रमुख आकर्षण भी हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित खूबसूरत गडीसर झील शांति चाहने वालों के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। इसका इतिहास 14वीं शताब्दी का है, जब यह पूरे शहर के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत था। अब गडीसर झील एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और निकटवर्ती जैसलमेर किले और इसके किनारे पर मौजूद मंदिरों के सुंदर दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों में यहां घूमने आ रहे हैं तो आपको यहां कई प्रवासी पक्षियों का भी जमावड़ा दिखाई दे सकता है। बड़ा बाग के अंदर स्थित व्यास छतरी जैसलमेर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के साथ सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर की छतरियों की एक सरणी के साथ ये संरचनाएं देखने लायक है। छतरियों की वास्तुकला को निहारने के अलावा आप एक तरफ जैसलमेर किले और दूसरी तरफ रेत के टीलों के सुंदर दृश्यों का आनंद

सकते हैं। देश के सबसे प्रामाणिक रेगिस्तानी स्थलों में से एक सैम सैंड ड्यून्स सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्र मुक्त कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करता है। आप यहाँ रेगिस्तान सफारी पर भी जा सकते हैं या ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। थार रेगिस्तान के केंद्र में कई कैंपिंग प्वाइंट भी है। लोक नृत्य, रात्रि संगीत, प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली अन्य दिलचस्प गतिविधियां सैम सैंड ड्यून्स में देखी जा सकती हैं। खाबा किला कुलधरा गांव के पास जैसलमेर में एक और असामान्य और अद्भुत संरचना है। किले और गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने एक रात अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया था। अब यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन चुका है। इस किले से आप गांव के सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं, साथ ही कई खूबसूरत फोटोज भी खींच सकते हैं। किले का आकर्षण और सदियों पुरानी कलाकृतियों वाला एक संग्रहालय कई इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है।

बहनों, अभी आप सुन रहे थे एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत पर्यटन स्थल जैसलमेर, वार्ताकार कविता। बहनों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अंक की ओर। बहनों, हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जो हर माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और हर माँ के दिल के करीब भी होता है। हमारे बच्चे की सेहत और उसकी मुस्कान। जब घर में छोटा बच्चा आता है तो हम सब यही चाहते हैं कि वह हमेशा तंदुरुस्त रहे, उसे कोई नज़र न लगे, वह कभी बीमार न पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे की सबसे पहली और सबसे मजबूती रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आती है? तो बहनों, वो आती है माँ के दूध से। माँ का पहला दूध बच्चे के शरीर की एक ऐसी ढाल है जो बाहर की कीटाणुओं को बच्चे तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए माँ का दूध हर शिशु के लिए सबसे जरूरी है। यह बच्चे का पहला टीका भी है, पहला आहार भी है और सेहत की सबसे बड़ी गारंटी भी है। बहनों, माँ का दूध सिर्फ बच्चे के पेट नहीं भरता बल्कि उसे बीमारियों से बचाने वाले सबसे बड़ी ढाल भी बनती है। शिशु के सही विकास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्तनपान का समय, सही तरीका और अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म से पहले 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। इसके दौरान बच्चे को पानी, शहद, ऊपर का दूध या अन्य कोई चीज़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में 80% से अधिक पानी होता है जो बच्चे की भूख और प्यास दोनों पूरी तरह पूर्ण करता है। जब भी बच्चा रोए, हाथ की उंगलियां चूसे या मुंह चलाए तो ये बच्चे की भूख का संकेत होता है, तो उसे आप जरूर दूध पिलाएं। सामान्यतः नवजात शिशु को 24 घंटे में 8 से 12 बार दूध अवश्य पिलाना चाहिए। बच्चे अगर सोए भी हैं तो भी उसे समय समय पर उठा के उन्हें दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के बाद बच्चे को अपने कंधे पर लगाकर और उसकी पीठ थपथकाकर उन्हें गैस निकलवाएं तो बच्चे को पाचन शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वह अपच या उल्टी की समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चे को दूध पिलाएं। बहनों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में चलते चलते आइए सुनते हैं एक और गीत।

बहनों, किसी कारणवश आपको ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाए। बहनों, हम बातें कर रहे थे, बच्चे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे के स्वास्थ्य से ही निर्भर करता है कि वे आने वाले कल के लिए तैयार रहें। उनको बीमारी से बचाना है और उन्हें उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। बहनों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप पत्रों के माध्यम से हमें अवश्य जानकारी और सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है, कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। हमारा ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। हमें पत्र अवश्य लिखे। बहनों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम से दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए

येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश

प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में छठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम के विषय में।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत 1:10 पर, फिल्म संगीत अब से थोड़ी ही देर में आप आनंद ले सकेंगे 1:15 पर और 2:30 पर।

हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:40 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने। विद्यापति गीत का समय होगा शाम 6:10 पर। 6:25 पर हम आपको सुनवाएंगे संवाद, जिसे हम पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे।

मैथिली कार्यक्रम श्रृंगारहार हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 9:30 पर। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम के विषय में। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गाम घर का प्रसारण समय होगा 6:30 पर, 6:55 पर भी। आप सुन सकेंगे किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।

आइए सुनते हैं फिल्म लावा का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, गीत राहुल देव वर्मन का

फिल्म लैला मजनू में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत साहिर लुधियानवी की और संगीत मदन मोहन जयदेव का।

फिल्म आशा का ये गीत आइए सुनते हैं, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत आनंद बख्शी का लक्ष्मी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए आप सुनते हैं फिल्म आंटी नंबर वन का ये गीत। गायक कलाकार हैं विनोद राठौर, ज्योत्सना और सुमति। गीत समीर की और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

फिल्म आर पार में आइए सुनते हैं शमशाद बेगम को, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

आइए अब सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आए का ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार की आवाज़ में, आइए सुनते हैं फिल्म रंगोली का ये गीत। गीत हसरत जयपुरी की और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हुए आपको ले चलते हैं पटना केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरें।

अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं। फुलवाड़ी कार्यक्रम हमें रविवार सुबह 10:30 पर तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: के लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात मुदा अखन कहे कि गुआ कनी आन के दिया था बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आन के देता।
2: अपन परंपरा अपन संस्कार अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा की कार्यवाही छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

0: आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। कल से ये समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आज विधान परिषद सदस्य की शपथ लेंगे। सभापति अवधेश नारायण सिंह उन्हें विधान पार्षद पद की शपथ दिलाएंगे। भाजपा के देवेश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उनका राज्यपाल कोटे से मनोनयन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मी के आश्रित परिवार का कोई सदस्य अगर पहले से सरकारी सेवा में है तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि अनुकंपा पर नियुक्ति उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, बल्कि यह आकस्मिक आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सीमित राहत है। न्यायाधीश कुमार मनीष की एकलपीठ ने इस मामले में दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। पटना नगर निगम समेत प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज नगर निकाय कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की और अधिकतर मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

0: दौरान खगड़िया जिले में सबसे अधिक 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है। वहीं समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सीवान समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान मुख्तलिफ मामलों को लेकर हिजब मुखालिफ का हंगामा आज भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हिजब मुखालिफ के इराकीन ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इधर राज्यसभा की कार्रवाई तलबा के एहतजाजी मुजाहरा के दौरान पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों के हंगामे के सबब दोपहर 2:15 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की मौजूदगी में महकमा सनत के जरिए बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव का इनाकात किया गया। इस दौरान इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से मुतालिक मीटिंग में मुख्तलिफ सनती प्रोजेक्टों के लिए समझौता दस्तावेज पर दस्तखत किया गया। बिहार कानून साज असम्बली के इराकीन के लिए मसनू जहानत पर हसासियत से मुतालिक वर्कशॉप और वज़ीर-आला इलाकाई तरक्याती स्कीम के मौसर निज़ाम और पोर्टल के नफाज से मुतालिक एक तरबियती प्रोग्राम का इनाकात किया गया। PMIS प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर-आला सम्राट चौधरी और असम्बली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बदलते दौर में AI का मुअस्सर इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो AI का इस्तेमाल करके अपने कामकाज को मज़ीद आसान और शफाफ बनाएं। आकाशवाणी पटना से नशर हो रहे भोजपुरी खबरों का बुलेटिन के नशरिया के वक्त में तब्दीली की गई है। कल से इस खबर की बुलेटिन शाम 6:05 की जगह शाम 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी खबर का बुलेटिन का नशरिया आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश आज रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से हलफ लेंगे। चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह उन्हें कानून साज के काउंसलर का हलफ दिलाएंगे। बीजेपी के देवेश कुमार के इस्तीफा से खाली हुई सीट पर उनका गवर्नर कोटे से इंतखाब हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने वाजे किया है कि इंतकाल शुदा सरकारी मुलाजिम के खानदान का कोई फर्द अगर पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे फर्द को अनुकंपा पर तकरूरी नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि अनुकंपा पर तकरूरी जानशी का हक नहीं है, बल्कि ये इमरजेंसी माली परेशानी से उबारने के लिए दी जाने वाली महदूद राहत है। जस्टिस कुमार मनीष की सिंगल बेंच ने इस मामले में दायर एक रिट को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत रियासत के म्यूनिसिपलिटी में सफाई मुलाजमीन और ड्राइवरों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। शहरी तरक्यात के वजीर नीतीश मिश्रा ने आज शहरी बल्दिया के मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ उनके मुतालबात पर गुफ्तगू की और ज्यादातर मामलात पर हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई। इस मुस्बत गुफ्तगू के बाद वफद ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से लगातार बारिश हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खगड़िया जिला में सबसे ज्यादा 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और मगरबी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज बक्सर, गया, रोहतास, मशरकी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सीवान समेत रियासत के शुमाल मगरिब और जुनूब मगरिब हिस्सों के जिलों में शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। इसके साथ ही

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए कुल पद है 200। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। NFR रेलवे के लिए कुल पद है 6777। आवेदन शुरू होने की तिथि है 20/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा इसकी 15 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 24 साल। ऑफिशियल वेबसाइट पर www.nfr-recruitment.in पर जाकर अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कुल पद है 163। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं hcraj.nic.in पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अभी आप रोजगार सूचना सुन रहे थे। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक

0: नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
2: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
3: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई

0: बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष

विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहला गीत है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से लिया गया। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। आइए सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ये गीत, स्वर अलका याग्निक और कुमार शानू का, गीत समीर के हैं और संगीतकार जतिन ललित।

आइए अब सुनते हैं फिल्म हम है राही प्यार के से ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत समीर की और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

फिल्म नागमणि के इस गीत को आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार हैं अनु मलिक।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत।

अभी आपने लोकगीत के इस कार्यक्रम में जिन कलाकारों को सुना उनके नाम हैं राकेश कृष्ण झा, आनंद शंकर झा, विभा शर्मा।

राधा मोहन मिश्रा। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: रखते हैं भगवान शिव के ऊपर, वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का, तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है,
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती
0: आंखें कजरारी
1: है।
0: दिखने लग जाती हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा। तो बताइए आपको
1: हाँ
0: कौन
1: जी,
0: सा गीत सुनवाए।
1: और गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी। हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी। डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल,
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ, और जो लिसनर्स है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है,
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर
1: जी
0: में कैसा मौसम चल रहा है, और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ बहुत
0: अच्छा
1: ज्यादा। चाहे वो यहाँ का डल लेक हो, यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत
1: जी
0: गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है, और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल,
0: सही कहा।
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए, ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए ये बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके। और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मैं ना बोलूंगा मैं
0: अरे
1: ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटॉक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतने दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला रातने वो छाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी,
1: पर्व बहुत।

0: धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, पत्थरझरा सावन, बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर के आवाज में, सिंदूर फिल्म।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की

0: खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बाहर किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बाहर।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात को।
1: हाँ बहुत
0: पानी
1: सुंदर
0: को
1: लग रहा है,
0: पाकर
1: अभी मैं मका खेत में स्कॉल किया मैंने।
0: अरे वाह क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे
1: करते
0: भरे
1: हैं
0: खेत
1: दीदी,
0: की और उन्हें कहीं भेजते हैं अब कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं सबसे, मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है,
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी, आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: में करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पे थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस।
2: इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम।

0: मक्का धान सोयाबीन।
1: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
0: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
1: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
0: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
1: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
0: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
1: पशुधन भी है?
0: काम करते हैं।
1: पशुधन भी है?
0: जी जी, गाय है।
1: कितनी गाय है?
0: 3-4 गाय है मेरे पास।
1: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
0: खेती बाड़ी में चारा होता है, उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
1: अच्छा, वो खा लेती हैं?
0: जी जी।
1: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज़ भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
0: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
1: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
0: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
1: बताइए।
0: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा भोपाल ओझा ग्राम ककवासा जिला गुनासा बोल रहा हूँ मैडम जी। आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमाल सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक आ जाती है, होली तक आई।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: हाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है जी वाला।
0: अरे कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए आप 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ जी, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए मान लिया हमने, ठीक है सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कावड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कावड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं?
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: मैं ये बॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी।
2: बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे?
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर, झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: उसको पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर शिकरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है, भीमाशंकर, पुणे, बम्बई, कोकण, वो भाग में बारिश ज्यादा।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांधिकालीन सभा आरंभ होती है युवा

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। करेंगे बातें, सुनेंगे लोकगीत और साथ ही गज़लें। पहले कुछ बातें। आपने वो गीत अवश्य ही सुना होगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बिल्कुल, हमारा जीवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जीवन हमें बैठ जाने के लिए नहीं मिला है। हमें कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करते रहने के लिए ये जीवन मिला है। मनुष्य को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तो चिड़िया हो, पशु हो या जो भी कुछ जीव हैं, वो सब कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? मात्र अपने भोजन की तलाश में। लेकिन हम एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो अपनी जीवन की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए, अपने समाज को बदलने के लिए, अपने राष्ट्र को बदलने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करते हैं, जिससे हमारा उत्थान होता रहता है। और यही कारण है कि जब हम आदि मानव थे और आदि मानव से होते हुए पाषाण युग से, आदि मानव नहीं कहेंगे, पाषाण युग से हम यहाँ तक कंप्यूटर, और आज कंप्यूटर में भी आप देखेंगे रोबोट वगैरह जो है क्या क्या कुछ आ गया है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, AI आ गया है। तो ये एक दिन में और अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने वही जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हम और आप यानी मनुष्य सुबह शाम चलता रहा है तो यहाँ पहुँचा है। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि आगे भी हम इसी गति के साथ बढ़ते रहें, अपना, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कल्याण करें और उससे विश्व का कल्याण हो। क्योंकि कहा भी गया है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इस पूरे संसार को एक कुटुंब के रूप में देखा गया है, इसीलिए तो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम्। तो हम अपने राष्ट्र के साथ साथ इस विश्व का कल्याण करें, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। शुरुआत करते हैं अब हम गीत की। तो ये पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि देवी गीत है।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे थे क्रमशः सरिता परासर और स्नेहा झा को।
0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे वीरेंद्र कुमार मिश्रा को, और अब सुनिए ये गीत। ये गीत कुमकुम झा का गाया हुआ है।

जसवंत सिंह के सुर में सुन रहे थे आप ये गज़ल। और इसके साथ ही दोस्तों आज का युववाणी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओ, आपने आज जिन फिल्मों के गाने सुने वो थीं क्रमशः डंकी, सत्य प्रेम की कथा, छतरी वाली और डेढ़ बीघा जमीन। आवाजें थी क्रमशः अरिजीत सिंह, मीत ब्रोस, मोनाली ठाकुर, पीयूष मेहरोलिया, अखिल सचदेव, शर्ली सेटिया, प्रतीक गांधी और खुशहाली कुमार की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, समय हो चला है समाचारों का। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है।

0: उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:10

25 मिनट पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। साढ़े छः बजे गांव घर कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका। इसके अलावा 6:40 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। छः बजकर 55 पर सुनिएगा किसान वाणी। इसके प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार। आज आप सुनेंगे इसकी तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार। आज आप सुनेंगे इसकी तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। सात बजकर 7:50 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा। 8:00 कार्यक्रम सिंगारहार का समय होगा 8:15। 9:30 लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर समय मिलता है तो प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में क्रमशः आप सुनेंगे शारदा सिन्हा, गौतम मिश्र और काशीनाथ झा किरण को। पहले सुनिए शारदा सिन्हा का गाया हुआ ये विद्यापति गीत।

0: आपने क्रमशः शारदा सिन्हा, गौतम मिश्र और काशीनाथ झा किरण के स्वर में विद्यापति गीत सुने। काशीनाथ झा किरण के गाए इस विद्यापति गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:25 होने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद, संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। नीट मुद्दा पर छात्र सभक विरोध प्रदर्शनक बीच भेल पुलिस कार्रवाई सहित कतेको मुद्दा सब पर विपक्षक हल्ला गुल्लाक बाद लोकसभा के दिन भरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। एहि बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान आ आनो आन कानून संशोधन विधेयक 2026 के विचार और पारित करबा लेल प्रस्तुत कयलनि। विधेयक बिना कोनो चर्चाक हल्ला गुल्लाक बीच पारित भऽ गेल। एहि सँ पहिने दिन 11 सदनक कार्यवाही शुरू भेला पर लोकसभा हिरोशिमा आ नागासाकीक परमाणु बम विस्फोट पीड़ित सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयलक। ओतहि राज्यसभाक कार्यवाही काल्हि दिन 11 धरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक सोझा में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस कॉन्क्लेवक आयोजन बीच इंटीग्रेटेड स्टील प्लांटक बैसार में 10 औद्योगिक परियोजना सब लेल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनौलनि अछि जे बदलैत समय में तकनीक आ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शासन प्रशासनक मुख्य हिस्सा बनि गेल अछि। ओ जनौलनि जे एहि सँ जनप्रतिनिधि सब अपन अपन क्षेत्रक विकास योजना सभक

0: सँ निगरानी कऽ सकताह आ काज मे पारदर्शिता आ गुणवत्ता सेहो बढ़त। मुख्यमंत्री आई विधानमंडलक सदस्य सब लेल आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर संवेदनशीलता कार्यशाला के संबोधित कऽ रहल छलाह। एहि मौका पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मे परियोजना निगरानी प्रणाली PMIS वेब पोर्टलक शुभारंभ कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार संयुक्त रूप सँ कार्यक्रमक उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषदक सभापति अवधेश नारायण सिंह, राज्य सरकारक मंत्री, विधायक, विधान पार्षद आ आनोआन वरिष्ठ अधिकारी सब छलाह। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जनौलनि जे प्रदेशक विद्यालय सब मे शीघ्रहि कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कयल जायत। ओ जनौलनि जे बदलैत समय मे विद्यार्थी सब के आगू बढ़वा लेल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सँ जोड़ब जरूरी अछि। ओ जनौलनि जे राज्यक विद्यालय सब मे कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप सँ लागू करबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। प्रदेशक सब सरकारी विद्यालय में आब शनि दिन हाफ डे कक्षा चलत। शिक्षा विभाग विद्यालयक समय में संशोधनक अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि। नव आदेशक अनुसार शनि दिन विद्यालय 9:30 बजे सँ दोपहर 1 बजे धरि चलत, जखनकि सोम दिन सँ शुक्र दिन धरि विद्यालयक समय पहिने जेहन 9:30 बजे सँ साँझ 4 बजे धरि चलत। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जनौलनि जे AI सँ बिहारक स्वास्थ्य सेवा के हाईटेक बनाओल जाए। पटना में संवाददाता सबसे गपशप में वो जनौलन जी सरकार एहन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहल है जाहि से अस्पताल में रेफरल आ आनो आन बेडक रियल टाइम जना सकत। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आई विधान परिषद सदस्यक शपथ लेलन। सभापति अवधेश नारायण सिंह हुनका विधान परिषदक पदक शपथ दियौलनि। भाजपा के देवेश कुमारक इस्तीफा से खाली भेल सीट पर हुनक राज्यपाल कोटा से मनोनयन कयल गेल छल। पटना नगर निगम सहित प्रदेशक नगर निकाय सब में सफाई कर्मी आ चालक सबक हड़ताल आज समाप्त भऽ गेल। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा आई नगर निकाय कर्मी प्रतिनिधि सब सँ मांग पर चर्चा कयलनि आ बेसी मामला पर विचार करबाक आश्वासन देलनि। एकर बाद प्रतिनिधिमंडल हड़ताल समाप्त करबाक घोषणा कयलक। पटना उच्च न्यायालय जनौलक जे मृत सरकारी कर्मचारीक आश्रित परिवारक कोनो सदस्य जँ पहिने सँ सरकारी सेवा मे छथि तऽ दोसर आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति नहि देल जा सकैत अछि। प्रदेशक बेसी भाग में मानसूनक सक्रियता से वर्षा भऽ रहल अछि। पछिला 24 घंटाक बीच खगड़िया जिला में सबसे बेसी 230.3 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। ओतहि समस्तीपुरक विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गयाक वजीरगंज में 111, नवादाक हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारणक वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार आई बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सिवान सहित राज्यक उत्तर पश्चिम आ दक्षिण पश्चिम भाग में भारी वर्षाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर।

कार्यक्रम गाम घर सुननिहार समस्त स्नेही श्रोता लोकन के देवू भाईक नमस्कार। श्रोता लोकन आई गुरुवार दिन है आ गुरुवार दिन के हमरा लोकन सुने छी साप्ताहिक कार्यक्रम जागरूक गाम। तो कार्यक्रम जागरूक गाम तो सुनबे करब संग संग गीतनादक आनंद सेहो लेब। मुदा ओहिसँ पहिने किछु दू टप्पी गपशप कऽ ली। श्रोता लोकनि अखिनका समयमे जे देख रहल छी

0: जे मौसमके उतार चढ़ाव आइ जे सदखन कखनोमे गर्मी कखनोमे वर्षा समयके अनुकूल नहि हेनाइ ई सब जे छै पर्यावरणके जे छै दूषितके कारण एहना होइए। तो आइ हमरा लोकनि गपशप करब पर्यावरण संरक्षणमे वनक भूमिका। तो सबसे पहिने तऽ पर्यावरण संरक्षणमे हमरा लोकनि कोना ओकरा बनाके रखी जाहिसँ समस्त जीव प्राणीके लेल अनुकूल बनि सकै, किएक तऽ पर्यावरणके विघटनमे हम मानव ही सबसे पैघ दोषी छी, किएक तऽ समयके अनुकूल जे हमरा लोकनिके पेड़ पौधा जाहि दरसँ जनसंख्या बढ़ि रहल अछि, जाहि दरसँ पेड़ पौधाके कटाइ भऽ रहल अछि, ओहि दरसँ हमरा लोकनि पेड़ पौधा नहि लगा रहल छी। परिणाम ई भऽ रहल अछि कि असमय वर्षा, असमय तूफान, असमय सुनामी, एहि तरहक समस्या हमरा लोकनिके देखबामे आबैत रहैत अछि। एहिसँ मानव जीवनके तऽ खतरा होइते अछि, सङ्ग सङ्ग आनो जीव प्राणीके लेल सेहो खतरा उत्पन्न भऽ रहल अछि। अखने देखू ने कि सबटा चापाकलके जे देख रहल छी, एकटा समय छल जे इनार पोखरि जे छै हमर बुजुर्ग लोकनि जे खुनबाबै छलखिन हँ, ठाम ठाम इनार पोखरि रहै छल आ कखनो पानिके दिक्कत नहि होइ छल, मुदा अखिनका देख रहल छी चाहे ओ गाम हुए वा शहर हुए, सब ठाम देख रहल छी जे नहु नहु चापाकल सूखि रहल अछि। तऽ ई सब की अछि? ई सब अछि पर्यावरणके विघटनके दोष। तऽ एहि लेल जे छै अपन सुख सुविधा आ भौतिकतावादके लेल हमरा लोकनि जे छै डबराके भरि रहल छी, पोखरिके भरि रहल छी, नदी नालाके भरि रहल छी, आओर ओहिठाम जे छै जतय पानि जमा रहै छल ओहिठाम अहाँ जे छै महल बना रहल छी, ओतय फैक्ट्री लगा रहल छी। परिणाम ई भऽ रहल अछि जे असमय सब कुछ परिवर्तन भऽ रहल अछि। ताहि दुआरे हमरा लोकनिके चाही जे बेसीसँ बेसी पेड़ पौधा लगाबी, सङ्ग सङ्ग एकटा पौध सौ पुत्रके समान होइए। ताहि दुआरे हमरा लोकनि जे छै दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइडके मात्रा बढ़ि रहल अछि, ऑक्सीजनके मात्रा घटि रहल अछि, आ जँ जखने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़त तऽ अनेको तरहक समस्या हमरा अहाँके बीच बढ़त, अनेको तरहक रोग व्याधिके समस्या बढ़त। तो पर्यावरण संरक्षण कोना रहत? एहि लेल जे छै कमसँ कम हमरा लोकनि धियापुताके जे जन्मदिन मनाबै छी, हम तऽ कहब कि ओहि दिन एकटा पेड़ जरूर लगाउ यादगारके लेल, धियापुताके लेल। तऽ श्रोता लोकनि बेर रहत तऽ फेन आगू गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने लै छी एकटा छोट सन विराम।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ, पुनः स्वागत है कार्यक्रम जागरूक गाम में। आब गपे सब तऽ है, गप सबके संग संग किछु गीतनाद सेहो ने हेबाक चाही श्रोता लोकनि। तऽ आउ जे अखन सावन मास गुजरि रहल अछि आओर एहि समयके अनुकूल हमरा लोकनि एकटा सुनै छी अरविन्द कुमार झाके स्वरमे, भोला सुनियौ दुपाती।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, कार्यक्रम के फेन आगा बढ़ाबी, अस्पताल लोकन सुने छे एकटा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
3: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
4: कहते हैं दोस्तों कि अगर जो हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारा शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, हम निरोगी हैं, तभी जिंदगी का भरपूर मजा ले सकते हैं। और ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान जो राजेश लेकर आता है नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास की तरफ से, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, जिससे आप जिंदगी का भरपूर मजा ले सकें, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, कोई विकार ना हो। अगर विकार हो भी जाए तो आप तक हम जानकारियां पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सब हाँ पास के डॉक्टर से संपर्क कर सकें, और जो नंबर हम आगे बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में उस पर संपर्क कर सकें और अपने लिए एक हेल्दी लाइफ हाँ बना सकें। हमारा जोर बहुत रहता है बच्चों पर। हाँ, आप लगातार सुनते होंगे चाइल्ड कार्डियक सर्जरी, चाइल्ड कार्डियक प्रॉब्लम के विषय में, बच्चों के हृदय रोग में अगर कोई समस्या हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे अस्पताल में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में भी बताते हैं। चाहे शरीर में किसी भी तरीके का विकार हो जाए उसको ठीक होना ही होगा, जी हाँ, अगर सही तरीके से इलाज हो जाए। और ये कार्यक्रम जो है आप तक हमें पहुंचाने में, यानी आपके राजेश को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हमने कहा नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास, यहाँ हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। हाँ, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं आकर यहाँ पर, और बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, जी हाँ, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलता है। आपके शरीर में कोई भी विकार होना या हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे सीधे डायल कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर है 6206803040, 6206803040 ये नंबर है, इसको डायल करके जानकारियां ली जा सकती हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और जिससे हमारा अनिष्ट भी होता है, फिर हम उससे उबर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका निदान भी है, जैसे बर्न हाँ जल जाना, इसका भी निदान है। और इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में पिछले एपिसोड में ही बुलाया था डॉक्टर स्वर्ण लता शिरोमणि जी को, आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं जिसका जवाब हाँ उनसे लेना है। जिन लोगों ने

0: पिछले सप्ताह नहीं हमारा ये कार्यक्रम सुना था, उनके लिए डॉक्टर साहिबा एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णलता शिरोमणि है। मैं एक बर्न्स और प्लास्टिक सर्जन हूँ सर। मैंने MBBS मेरी डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से किया हुआ है। MS जनरल सर्जरी मैंने एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया हुआ है और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई मैंने तमिलनाडु में चेन्नई से किलपॉक मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है सर।
0: डॉक्टर साहिबा, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ये क्या है, दोनों का तालमेल इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए।
1: जी सर, सो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सर, इट्स नॉट दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, तो ये हैंड इन हैंड साथ के साथ जाते हैं सर। जैसे कि बर्न्स बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है गर्म पानी के गिर जाने से, गर्म चाय के गिर जाने से, थोड़ी सी लापरवाही, अभी जैसे खेतों में जो बर्न जला, क्रॉप्स जलाने के बाद जो वापस से खेती करते हैं सर, थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं। तो आग तो लग जाती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट का क्या करना है, कैसे डील करना है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो वहीं पे जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है साथ के साथ। ये दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ के साथ चलती हैं। तो जैसे बर्न्स के पेशेंट जो हैं, मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ड्रेसिंग करके ठीक हो जाएगा, पास में रख के, घर पे रख करके ठीक हो जाएगा, पर छोटा से छोटा बर्न जो है सर, काफी बड़ा घाव बन सकता है, काफी गहरा घाव बन सकता है, जो कि मे बी लाइफ टाइम में कभी ना ठीक हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं सर। तो इसके लिए जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए सर इस चीज की पढ़ाई करना, इसके लिए काफी पैशनेट थी मैं, तो जिसके लिए मैंने इस चीज की पढ़ाई करी है।
0: बिल्कुल सही, जानकारियां पहुंचाना, हाँ बहुत बड़ी बात है, जानकारियां होंगी तभी तो कोई कुछ करेगा। और ये रेडियो कार्यक्रम पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, जिसे हम नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ से लेकर आ रहे हैं, जो जमुआर सासाराम रोहतास में है, जानकारियां पहुंचाते हैं और निदान भी बताते हैं। पहले डॉक्टर साहिबा से हम सवाल पूछें, उससे पहले हम कुछ गुजारिश करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि किचन में संभल कर काम करें, गर्म पानी अगर आसपास है तो ध्यान से चलें, कहीं भी अगर खेत में पराली जलाई जा रही है या जला है पहले से, तो किसान भाई या उनके परिवार के लोग जाने से पहले सोचें, यानी सतर्क रहें, सतर्कता में ही सब कुछ है। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए कि अगर जो जल जाएं, हाँ तो सबसे पहले क्या करें जलने के बाद?
1: तो सर जब सबसे पहला आग लग जाए सर, जैसे किसी को भी गर्म पानी गिर गया, बहुत तरीके होते हैं, गर्म पानी गिर गया, गर्म स्टीम जैसे भाप, गर्म भाप से हो सकता है ये सब गिर गया, या आग लग जा रही है किसी चीज से, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है सर, उस आग को पहले तो पेशेंट को उस एरिया से, आग वाली एरिया से जहां से लगा है वहां से दूर करके जल्दी से उस आग को बुझाना। अब आग को कैसे बुझाया जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी जल्दी पानी वगैरह डालते हैं या कंबल डाल देते हैं, सही तरीका है, लेकिन कितने देर के लिए रखना है। पानी में जैसे आग लगी है, जैसे आपने आग बुझा दी है, पानी में कितने देर के लिए रखना है। कभी कभी लोग एक एक घंटे छोड़ देते हैं पानी चला करके, कभी कभी काफी कम समय 5 मिनट, सो लगभग जो है 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर जो है पेशेंट को रखना है, पानी डालना है, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए जी। तो उससे क्या होगा सर, जो जलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होगी, खत्म नहीं होगा लेकिन वो स्लो होगा। तो स्लो होने से आगे जो है मरीज को काफी फायदा होगा सर आगे की ट्रीटमेंट में। तो जब ट्रीटमेंट है ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाती है, जैसे आग लगी उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, पेशेंट के अटेंडर्स जो उनके साथ वाले हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है सर। तो जिस वक्त तक वो हॉस्पिटल पहुंचे पेशेंट की काफी मदद हो सकती है सर, जान तक बच सकती है।
0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में पहली दफा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ, डॉक्टर स्वर्णलता बैठी हैं, इनसे बातचीत हो रही है और बहुत सारी जानकारियां हमने ली और आगे भी लेंगे। नंबर नोट करें, अगर किसी के साथ ये समस्या आ जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर आ जाए तो इस नंबर को डायल करें या पहले से डायल करके जानकारियां और ज्यादा ले लें। ये नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

0: जमुआर सासाराम हाँ का नंबर है और नंबर है 6206803040 6206803040 ये नंबर है। जलने बर्न होने की स्थिति में क्या करें क्या ना करें कहां ले जाएं ये तो जानकारियां ले ही लीजिए, लेकिन दूसरे बीमारियों के बारे में भी इस नंबर पर जानकारियां ली जा सकती हैं। चाइल्ड हाँ कार्डियक सर्जरी की अगर बात हो या चाइल्ड कार्डियक बीमारी की बात हो, बच्चों के हृदय रोग की बीमारी की बात हो तो भी इस पर बातचीत की जा सकती है। एक जानकारी और दे दें, अब पैसे की चिंता नहीं करनी है। भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है ना, उस पर हर तरीके का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया जाता है। बहरहाल डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, कोई जल गया हाँ, चाहे जितना ज्यादा जला हो कम जला हो या थोड़ा सा ही जला हो, उसे कितनी जल्दी वो गुड टाइम कितना होता है कि उसे डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए?
1: जी सो सर, कहीं पे भी बर्न एनीवेयर इन द बॉडी एज सून एज पॉसिबल इज द जितनी जल्दी हो सके इज द मेन थिंग। जितनी जल्दी हो सके आप आए। जहां तक सवाल है कि कौन जल्दी आए और कौन लेट आए, बर्न बहुत ज्यादा है, शरीर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बर्न आपके चेहरे पे है, पेशेंट के चेहरे पे है, पेशेंट के गले में गया है या फिर ऐसी जगह पे पेशेंट ऐसे कमरे में बंद रहा है जहां पे बर्न हुआ हो और वो धुआं जो है उनके नाक मुंह के द्वारा सूंघा गया हो, तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली हायर सेंटर टर्शरी सेंटर भेजना बहुत ही जरूरी है। बच्चे वल्नरेबल पॉपुलेशन सर, जैसे कि प्रेग्नेंट माताएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इमीडिएट ट्रांसफर बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से सर जैसे यंग लोग भी हो गए, तो अगर काफी ज्यादा बर्न हुआ पड़ा है, हाथ मुंह पांव अगर हाथों में है तो तुरंत भेजना जरूरी है। उसके अलावा सर काफी चीजें होती हैं पेशेंट के, छोटे से छोटे बर्न भी इमीडिएटली मेरे हिसाब से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि किसको क्या अंदरूनी बीमारी, डायबिटीज, आजकल इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब कुछ हो रखा है सर, तो वो आपको अस्पताल पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि किसको क्या दिक्कत है और हर चीज को, हर बर्न को ट्रीटमेंट करने की मोडालिटी अलग अलग होती है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि यदि जैसे भी बर्न हुआ है, जिस वक्त भी हुआ है, बुझा करके 15 मिनट पानी में डाल करके सफेद कपड़ा, साफ स्वच्छ कपड़े से उसको लपेट करके आप तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेकर के जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और यदि वहां से टर्शरी केयर सेंटर भेजा जा रहा है तो आप इमीडिएटली आ जाएं।
0: आप इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी आ जाएं, इग्नोर नहीं करें। एक बात बताइए हाँ डॉक्टर साहिबा हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार नंबर बता देते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। नंबर है 6206803040 6206803040 ये नंबर है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं? ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आप पहले इसे बताइए, अगले एपिसोड में आपसे और भी सवाल पूछेंगे।
1: तो हमारे यहाँ पर बर्न में एवरीडे के लिए आपकी ड्रेसिंग की फैसिलिटी है, उसके बाद 24 घंटे आपको डॉक्टर साहब रहेंगे केयर करने के लिए, प्लास्टिक सर्जन, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं देखने के लिए, डेली वुंड ड्रेसिंग करना करने से लेकर के यदि उसमें छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, छोटी से छोटी सर्जरी और बड़ी से बड़ी सर्जरी दोनों ही यहां पे अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड के साथ अवेलेबल है। 24 घंटे के लिए आपके पास स्टाफ, बर्न्स का आईसीयू अवेलेबल है, बर्न्स के ट्रेन्ड स्टाफ अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि एक पेशेंट को, बर्न्स के पेशेंट को जरूरत हो सकती है।
0: एक बहुत ही जरूरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं आपसे कि बर्न में या पैसे की समस्या होती है या लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डॉक्टर के पास नहीं ले जाने का, क्या आयुष्मान कार्ड में बर्न को समावेशित किया गया है? क्या बर्न का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो सकता है और नारायण मेडिकल कॉलेज में क्या ये सुविधा है?
1: डेफिनेटली आयुष्मान कार्ड से बर्न का इलाज हो सकता है, चाहे छोटा से छोटा बर्न हो, चाहे बड़े से बड़ा बर्न हो, किसी भी तरह का बर्न हो, आयुष्मान

0: मान आपको बर्न का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड कर रहा है।
1: आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वर्णलता। हम चाहते हैं कि जानकारियां आप तक होनी चाहिए, तभी तो आप क्या करें और क्या ना करें ये जान पाएंगे। बहरहाल इससे ज्यादा भी अगर जानकारी चाहिए तो नोट कीजिए नंबर 6206803040, 6206803040। ये नारायण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नंबर है, आप इसको डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। आज बर्न होने पर, जलने पर किया जाए, इसकी चर्चा हुई। आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हो सकता है, इसकी चर्चा हुई। लेकिन हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं, बच्चों की बात है कि अगर आपके बच्चे में हृदय की कोई बीमारी है तो नारायण मेडिकल कॉलेज के इसी नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का मौका दिया। मुलाकात होगी पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में एक बार फिर से आने वाले समय में। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: हाँ श्रोता लोकन, अखन प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहा छो आयुष्मान, खूब निक लागल। आशा करै छी जे श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। आ हमरा लोकन जे गप सब करै छलो हैं कि पर्यावरण संरक्षण के कोना बचाबी, तब हमरा लोकन समय में बांधल छी। एकरे संग जे छै जागरूक गाम के समेट रहल छी। नमस्कार।

गांव घर कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे किसान वाणी, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ संजय किशोर।
4: और मैं सुधा सिंह। तो संजय जी, सबसे पहले आज जो हम सुनवाने वाले हैं श्रोताओं को, उसकी एक झलक दे दें।
3: बिल्कुल, बताइए।
4: सामयिक कृषि चर्चा के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे धान की खड़ी फसल में उर्वरक प्रयोग के बारे में,
3: और इसके बाद योजना के अंतर्गत अटल पेंशन योजना के बारे में हम अपने किसान भाइयों को बताएं।
4: कृषि संबंधित जरूरी जानकारी वार्ता के माध्यम से,
3: और मनोरंजन के लिए भी कुछ है।
4: बिल्कुल,
3: लोकगीत हम सुनवाएंगे आप।
4: हाँ, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा श्रोताओं को। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने कहा, अपनी बातचीत से, सामयिक कृषि चर्चा से। संजय जी, अभी तो खरीफ मौसम का समय चल रहा है कृषि में, और खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण फसल है धान। हमारे राज्य में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कई किसान भाई तो धान की रोपाई कर भी चुके हैं, कई कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं की है वे भी जल्द से जल्द रोपनी करने की तैयारी में हैं।
3: सही कहा आपने सुधा जी, क्योंकि धान की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी समय के साथ कर लेना बहुत जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि उनके तैयारी के दौरान उर्वरक की जो मात्रा है उसकी सही जानकारी किसान, जैसे गोबर की खाद, डीएपी और पोटाश देने का सही समय उनको मालूम होना चाहिए। फसल जब लगा रहे हैं तो पोषक तत्वों की जो पूर्ति है उसको ध्यान में रखते हुए ये जरूर ध्यान कर लें कि कब कब किस किस अवस्था में वो उर्वरक का प्रयोग करें।
4: तो आज हम बात करते हैं धान की खड़ी फसल में उर्वरक के प्रयोग के विषय में।
3: बिल्कुल,
4: तो धान की खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच और फसल की अवस्था को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
3: सामान्यतः नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है उसे पूरा करने के लिए यूरिया का हम प्रयोग करते हैं, यानी हमारे किसान भाई करते हैं, तो टॉप ड्रेसिंग के समय में इसे किया जाना चाहिए।
4: अच्छा,
3: इसकी जो पहली मात्रा है रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए,
4: यानी जब कल्ले निकलने वाले होते हैं उस समय।
3: जी, 20 से 25 दिन के अंदर कल्ले निकलने लगते हैं, और इसी दौरान पहली मात्रा देनी चाहिए, और दूसरी मात्रा जो है वो 40 से 45 दिन के बीच में दी जानी चाहिए, जब कल्ला का फुटाव होने लगे, और अंतिम टॉप ड्रेसिंग जो है वो बाली जब निकलता है। अच्छा, उस समय करनी चाहिए।
4: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कब कब देनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए किसान भाइयों को। बिल्कुल, और धान की फसल में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, पोटाश, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता हो सकती है, तो इनका प्रयोग भी मिट्टी जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर करना चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा सुधा जी, जिंक की कमी होने पर पौधों की जो वृद्धि है वो रुक सकती है, और पत्तियों पर विशेष तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे नई पत्तियों पर पीलापन आ सकता है, या फिर पत्तियों पर सफेद धारियां दिखने लगती हैं, जो कि खैरा रोग के लक्षण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट की प्रति एकड़ की दर से यूरिया के साथ इसे मिलाकर तुरंत खेत में छिड़काव करना चाहिए।
4: और जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है वहाँ यदि पौधों में लौह तत्व की कमी हो तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर देना चाहिए। तो देखिए संजय जी, इस तरह से यदि हम संतुलित उर्वरक का प्रबंध करें तो फसल की अच्छी बढ़वार होती है और बेहतर उत्पादन भी होता है, साथ ही उर्वरकों पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कमी आती है।
3: खर्च बचाने का मतलब मुनाफा बढ़ना।
4: बिल्कुल। और ये तो बात थी हमारी सामयिक चर्चा यानी धान की खड़ी फसल में उर्वरक प्रयोग पर, और अब क्या विचार है?
3: विचार है कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी जब हम अपने किसान भाइयों को दे रहे हैं तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ किया जाए।
4: संजय जी, बरसात का समय है तो क्यों ना कजरी सुनवा दे श्रोताओं को। सुनते हैं, ये कजरी कलाकार हैं अवधेश कुमार।

0: बहुत ही प्यारा कजरी अवधेश कुमार जी सुना रहे थे, और अब मन कर रहा था कि इनसे कुछ और सुने, लेकिन अब कुछ और जानकारी वाली बातें हैं लगता है।
1: और अब चलिए बात हमारी आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में।
0: जी बताइए कौन सी योजना है।
1: पहले थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, अभी बताते हैं। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो और उम्र बढ़ने के साथ हमें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

0: जो कि अक्सर करना पड़ता है
1: बिल्कुल। और नौकरी पेशा लोगों को तो देखिए पेंशन की सुविधा मिल भी जाती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जिसमें काम करने वाले हैं अनेक लोग हैं, उनके लिए बुढ़ापे में नियमित आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता।
0: तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना भारत सरकार ने शुरू की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य लोगों को वृद्धावस्था में नियमित आय की सुरक्षा प्रदान करना। इसमें व्यक्ति अपनी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार नियमित योगदान करता है और 60 वर्ष की आयु के बाद

0: वृद्धावस्था में नियमित आय की सुरक्षा प्रदान करना। इसमें व्यक्ति अपनी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार नियमित योगदान करता है और 60 वर्ष की आयु के बाद उसे निर्धारित रूप में पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं
0: जी?
1: क्योंकि देखिए, जब हम स्वस्थ होते हैं और सक्रिय रहते हैं तब तो भविष्य की चिंता कम महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है तो नियमित आय का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए उस समय आय कम हो जाती है और खर्च ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई बुढ़ापे में कई तरह की बीमारियां होती हैं, इलाज है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में समय रहते पेंशन योजना से जुड़ना भविष्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाए रखने में मदद कर सकता है।
0: सही कहा आपने सुधा जी, और इस योजना में एक खास बात यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। सदस्य की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता है और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को ये पेंशन की राशि प्राप्त होती है।
1: अच्छा, जो भी मतलब संचित रहता है वो उन्हें मिल जाता है।
0: हाँ।
1: देखिए, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए ये भी हम बता दें। तो इसके लिए 18 से 40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है। योगदान की राशि खाते से नियमित रूप से स्वतः ही कट जाती है।
0: तो इसमें एक बात और ये भी बता देना चाहता हूँ कि पेंशन की राशि जितनी अधिक चुनी जाएगी और सदस्य की उम्र जितनी कम होगी उसके अनुसार योगदान की राशि निर्धारित होगी। यानी कि अगर आपकी उम्र कम है 18 के आसपास तो अगर आप राशि चुन लेते हैं तो आपको 60 साल तक अधिक से अधिक राशि संचित होगी।
1: बिल्कुल।
0: जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है अंशदान यानी कि जो मासिक किस्त की राशि है वो अधिक देनी पड़ती है। तो इसीलिए उम्र बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आप अपनी राशि चुन लिए।
1: मतलब कम उम्र में अगर जुड़ते हैं तो योजना का अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकते हैं।
0: इसलिए कम उम्र में योजना से जुड़ने पर लंबे समय तक योगदान करने का आपको अवसर मिलता है, तो भविष्य की इसमें आर्थिक सुरक्षा जो है वो मजबूत हो जाती है और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर, उतना ही मजबूत आपका धन संचित रहेगा।
1: बिल्कुल संजय जी, अटल पेंशन योजना केवल पेंशन प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि ये भविष्य के लिए आर्थिक अनुशासन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। विशेष रूप से छोटे व्यवसायी, दुकानदार, मजदूर, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए इस योजना पर विचार कर सकते हैं।
0: तो फिर देर किस बात की है, समय रहते पेंशन योजना से जुड़िए और आप अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे, पेंशन है सम्मान की पहचान, बुढ़ापे का सबसे बड़ा वरदान।
1: क्या बात है। और इस बातचीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और हमने बताया था ना कि किसान भाइयों को एक जानकारी भी देंगे, तो चलिए सुनवाते हैं ये वार्ता। कम लागत अधिक मुनाफा हेतु नवीन कृषि प्रणाली, इस विषय पर ये वार्ता सुनते हैं हम लोग मनीष कुमार से।
2: आज के परिप्रेक्ष्य में किसानों के पास सीमित भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनके जरूरतें एवं खर्च अनंत है। ऐसी स्थिति में ऐसी तकनीक को कृषि प्रणाली में अपनाने की आवश्यकता है जो कि सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अधिक से अधिक आमदनी दे सके। इसके साथ ही अधिकांश कृषक परिवार कुपोषण के शिकार है, जिसकी वजह है कम आमदनी एवं शिक्षा का अभाव। यदि कृषि फसलों के साथ ही कृषि के अन्य घटक जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन इत्यादि को एक साथ कृषि में समाहित किया जाए तो किसान कम से कम अपने एवं अपने पूरे परिवार को अपने प्रक्षेत्र के उत्पादन से ही कुपोषण से निजात दिला सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली क्या है? कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बत्तख पालन, चारा उत्पादन, कृषि वानिकी, बकरी पालन, फूल उत्पादन एवं वर्षा जल संचय इत्यादि को जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाता है कि एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता, लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। क्योंकि यह स्वसंपोषित पद्धति है जो अवशेषों के चक्रीय एवं जल तथा पोषक तत्वों के आदि के निरंतर प्रभाव पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी एवं निरंतर आमदनी तथा रोजगार का सृजन होगा। घटते हुए भूमि संसाधन से बढ़ती

जनसंख्या की जरूरत को देखते हुए टिकाऊ खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समेकित कृषि प्रणाली के मुख्य उद्देश्य निश्चित एवं स्थिर आय प्रदान करने वाले सभी घटक उद्यमों के उत्पादन को बढ़ावा, मिट्टी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए उत्पादकता स्तर को बरकरार रखना तथा प्राकृतिक संपदा का समुचित उपयोग, समन्वित प्रबंध द्वारा कीड़े मकोड़े बीमारियों खरपतवार पर नियंत्रण रखना या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले स्तर से नीचे रखना, जल की उत्पादकता को बढ़ाना एवं जल का बहुआयामी उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक खरपतवार नाशक एवं दूसरे रासायनिक उत्पादों का कम से कम उपयोग करना ताकि वातावरण स्वच्छ प्रदूषण रहित स्वस्थ रहे, जिसमें कि समाज एवं लोग लंबे समय तक सुरक्षित एवं स्वस्थ रह सके। समेकित कृषि प्रणाली से लाभ। समेकित कृषि प्रणाली प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। सीमित भूमि पर फसलों का विविधीकरण एवं कृषि के साथ अन्य घटकों का समावेश करने से प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। समेकित कृषि प्रणाली में एक घटक के अवशिष्ट का उपयोग दूसरे घटक में निवेश के रूप में किया जाता है, जिससे कि पोषक तत्वों का पुनः प्रयोग हो जाता है तथा इससे दूसरे पदार्थों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है एवं हमारे उत्पादन पर आने वाले व्यय में भी कमी आती है। एक ही भूमि से ज्यादा उत्पादन लेने के क्रम में कम से कम हमें 2% अधिक रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे मिट्टी प्रदूषित और बीमार हो जाती है। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने से घटक अवशिष्टों के बारंबार उपयोग से हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा स्वतः बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी से लंबे समय तक अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। समेकित कृषि में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन आदि पोषक तत्वों की उत्पादन एक ही भूमि पर हो जाता है, ताकि यह कृषक परिवार के कुपोषण आदि बीमारियों से निदान पाने में लाभकारी हो सके। आधुनिक कृषि प्रणाली में रासायनिक खादों, कीटनाशकों आदि का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, परिणामतः मिट्टी एवं पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक घटक का अवशिष्ट दूसरे घटक द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिससे रासायनिक खादों एवं अन्य रासायनिक पदार्थों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है तथा भूमि एवं पर्यावरण का संरक्षण लंबे समय तक होता रहता है। परंपरागत कृषि द्वारा अनाज के पकने एवं कटने के समय ही आमदनी होती है, जबकि समेकित कृषि के विभिन्न घटकों को कृषि के साथ शामिल करने से पूरे वर्ष आमदनी की निरंतरता बरकरार रहती है। ये घटक दूध उत्पादन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फल सब्जी उत्पादन, रेशम उत्पादन, लाह उत्पादन, मत्स्य उत्पादन आदि से हो सकता है। धनाभाव के कारण प्रायः छोटे और सीमांत किसान नवीन तकनीकों के उपयोग से वंचित रहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न घटकों द्वारा वर्ष भर आय प्राप्त होती है, अतः छोटे और सीमांत किसान भी धीरे धीरे नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम हो जाते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2030 तक ऊर्जा की कमी होना निश्चित है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उत्पादन एवं उपयोग का ज्ञान 2 से 3 दशक के अंदर हो जाना चाहिए। समेकित कृषि में विभिन्न अपशिष्टों द्वारा बायोगैस का उत्पादन संभव है, जो ऊर्जा का एक ठोस वैकल्पिक स्रोत है। हालांकि यह पूर्ण रूप से फॉसिल ऊर्जा की कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं है, पर कुछ हद तक यह वैकल्पिक ऊर्जा देने में सक्षम है। क्योंकि समेकित कृषि में संपूर्ण भूमि का समुचित उपयोग किया जाता है, जैसे खेत की मेरों, नालियों, तालाब के घेराबंदी वाले क्षेत्रों में भी सब्जी, फल, फूल आदि लगाए जाते हैं तथा चारा उत्पादन समेकित कृषि का एक मुख्य अंश है, अतः इस प्रणाली में साल भर चारा फसल का उत्पादन की व्यवस्था होती है, ताकि पशुओं को ताजा एवं हरा चारा आसानी से उपलब्ध हो जाए। कृषि फसलों के साथ अन्य घटकों के समायोजन से श्रमिकों की मांग भी बढ़ती है, चूँकि ये घटक वर्ष भर गतिशील होते हैं, अतः समेकित कृषि में श्रमिक नियोजन की क्षमता बढ़ जाती है, जो कि बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होती है। जो किसान कृषि के साथ अन्य घटकों का समायोजन करते हैं, जैसे कि बागवानी, मशरूम उत्पादन, रेशम उत्पादन, कुक्कुट या मधुमक्खी पालन, स्पॉन उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बायोगैस उत्पादन आदि, लंबे समय तक इन घटकों को अपने कृषि में समायोजन करने से उन्हें उस घटक के बारे में पूर्ण विशिष्टता प्राप्त हो जाती है, जिससे

0: के ज्ञान में वृद्धि होती है, फलस्वरूप कृषक अपने बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम हो जाते हैं, उनकी जीवन शैली में बदलाव तथा रहन सहन में भी परिवर्तन होता है, जिससे समय का ढांचा सुदृढ़ होगा और हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। समेकित कृषि प्रणाली के प्रकार। समेकित कृषि में मूलतः किसी एक घटक पर आधारित करके दूसरे घटकों को समन्वित किया जाता है। देश में मुख्यतः तीन घटक आधारित कई खेती प्रणालियां अपनाई जा सकती है। फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली में खाद्यान्न फसलें जैसे धान के साथ मत्स्य पालन, फसल के साथ मत्स्य पालन, बत्तख पालन, फसल के साथ बागवानी कृषि प्रणाली आप अपना सकते हैं। किसान भाई फसल के साथ साथ बागवानी सह वानिकी प्रणाली को भी अपना सकते हैं। उसके बाद फसल के साथ बागवानी चारागाह सह वानिकी कृषि प्रणाली को भी अपना सकते हैं। दूसरा है पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली। इसमें फसल के साथ बकरी पालन, दुधारू पशु पालन सह मत्स्य पालन, वानिकी सह पशुपालन, कृषि फसल सह बकरी पालन, कृषि फसल सह बागवानी सह सुगर पालन इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली में बागवानी सह मत्स्य पालन, खाद्यान्न फसल के साथ मत्स्य पालन, रेशम पालन के साथ मत्स्य पालन, बत्तख पालन के साथ मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन के साथ भी मत्स्य पालन, दुधारू पशु पालन के साथ भी मत्स्य पालन, सुगर पालन के साथ भी मत्स्य पालन, बकरी पालन के साथ भी मत्स्य पालन और खरगोश पालन के साथ भी मत्स्य पालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के साथ मत्स्य पालन की विशेषता है, धान विश्व के लगभग बहुत सारे लोगों के मुख्य भोजन में है और एशिया धान का प्रमुख उत्पादक है तथा लगभग 90% धान का उत्पादन एशिया महादेश से होता है तथा कई ग्रामीण परिवारों का जीविकोपार्जन इसी से होता है। धान के खेतों में मछली पालन की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत द्वारा ही करीब 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। धान के साथ मत्स्य प्रणाली में जरूरत होती है धान के साथ मत्स्य प्लांट में बदलाव, परिधीय गड्ढे की खुदाई, मेयर का निर्माण, तालाब, धान की उन्नत प्रजातियों की बुआई जैसे पानी धान, तुलसी, सीआर 260-77, उर्वरीकरण, 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मछलियों का संग्रह तथा अंततः संग्रहित मछलियों को शारीरिक वजन से 2-3% की दर से धान का भूसा और खली इत्यादि देना चाहिए। मछली जब बाहर में बेचने लायक हो जाए तभी मछलियों को तालाब से निकालना चाहिए। खाली जमीन पर सब्जी फल आदि उगाकर अतिरिक्त आमदनी किया जा सकता है। इस प्रणाली से करीब 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आय की प्राप्ति हो सकती है जो पारंपरिक खेती से अधिक होती है। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे एक वर्ष का जो ये जो चक्र है उससे कुल शुद्ध आमदनी हमको 1,78,800 रुपये प्रति वर्ष एक एकड़ जमीन से मुनाफा कमाकर हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं।
1: ये वार्ता हम लोग सुन रहे थे मनीष कुमार से, कम लागत अधिक मुनाफा के लिए नवीन कृषि प्रणाली अपनाया जाए उस विषय से संबंधित।
2: बहुत ही उपयोगी वार्ता थी जो हमने अपने किसान भाइयों को सुनवाई है और इस वार्ता के माध्यम से हो सकता है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो अब तक इसका लाभ नहीं ले सके हैं वो लाभ ले पाएंगे।
1: और देखिए अभी समय बारिश का है संजय जी, तो हम कुछ बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि देखिए इस बारिश के मौसम में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अधिक बारिश हो रही है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि खेतों में अतिरिक्त पानी न जमा हो जाए, जल जमा ना हो जाए, तो उसका अच्छे से निकास की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उसमें हम कहना चाहेंगे, अभी हमने बात भी की उर्वरक प्रयोग के बारे में, तो जो पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं डालने जा रहे हैं तो पहले खेत से अतिरिक्त पानी जो है उसको निकाल दें और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही नमी खेतों में बनाकर रखें।
2: बहुत अधिक पानी भरे खेत में यूरिया डालने से पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है, तो किसान भाई ये ध्यान रखें आप, और ये भी ध्यान रखें कि अधिक यूरिया का प्रयोग कभी ना करें क्योंकि अधिक यूरिया के प्रयोग से खरपतवार में वृद्धि हो जाती है, तो जो पोषण मिलना चाहिए पौधे को वो नहीं मिल पाता है। पोषण जो है खरपतवार ले जाएंगे और कीट और रोगों का प्रकोप भी इससे बढ़ सकता है। तो इस अच्छी सी बात पर हम चाहेंगे कि किसान भाई जो कुछ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हासिल कर रहे हैं उसके संबंध में यदि कोई अपनी बात, कोई विचार या कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो हमें जरूर दें। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है aipatna@gmail.com।
1: और अब चलते चलते मौसम की जानकारी श्रोताओं को दे दें। बिहार के कई जिलों में बारिश और गरज के साथ आंधी तूफान की पूरी संभावना है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री

0: सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। संजय जी, बातों बातों में समय का पता भी नहीं चला और वक्त हो चला है हमारे जाने का।
1: अच्छा, विदा लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अभी के लिए
2: खेतों की आवाज, देश की पहचान।
0: नमस्कार।
3: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, क्या ले आई इतनी बोरियों में?
4: खाद है सरजू भाई, यूरिया, डीएपी, पोटास, यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस। घाटे का सौदा है खेती।
3: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
4: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
3: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है, इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
4: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
3: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
4: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
3: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
6: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई वीडियो को हटाने की चूक के लिए मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। बिहार में निवेश के लिए सरकार ने 10 कंपनियों के साथ किया समझौता, प्रस्तावित निवेश से 27,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद नगर निकाय के सफाई कर्मियों और चालकों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। हंगामे के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को हटाने, बाल यौन शोषण सामग्री डीप फेक

0: सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई चूक के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जगरबर्ग की माफी को भारतीय कानूनों की जीत बताया है।
1: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच लगभग 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में 10 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश से सीधे 27,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। निवेश करने वाली कंपनियों में श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड, नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, श्री समृद्धि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव ग्रुप भारत साइंस एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अनुभव अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बदलते समय में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन प्रशासन का अहम हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी उपयोग से जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी कर सकेंगे और कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
2: AI से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ लोग क्यों चिंतित है और आपको एक रिपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी। अब इस ताकत को एक व्यक्ति से जोड़ने का समय आ गया और इसके माध्यम से कैसे माननीय विधायक माननीय मंत्री इस टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कैसे अपने क्षेत्र के विकास की भी चिंता कर सकते हैं और प्रदेश में मंत्रीगण भी अपने डिपार्टमेंट।
0: मुख्यमंत्री आज विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर संवेदनशीलता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजना निगरानी प्रणाली PMIS वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि AI से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जो अस्पतालों में रेफरल और अन्य बेड की रियल टाइम उपलब्धता बता सकेगा।
3: एक ऐसा सॉफ्टवेयर AI के माध्यम से हम जनरेट कर रहे हैं जिससे आपको बेड की उपलब्धता के बारे में पता चल जाएगा। एक ऐसा वो IP फोन हम लगा रहे हैं हर स्वास्थ्य संस्था में जहाँ से कि हम टेलीफोन से, लैंडलाइन से और उसमें वीडियो की व्यवस्था रहेगी उससे भी हम जुड़ सकेंगे। तो हम AI के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात है या फिर आपका बेड की उपलब्धता की बात है तो ये सब चीजें हम जान जाएंगे।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के स्कूलों में जल्द कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बदलते समय में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू

0: करने की तैयारी की जा रही है।
1: ये तो समय की मांग है और पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा रहा है, तो बिहार वैश्विक मंच पे कैसे आगे जाए इसके लिए बिहार भी एक बड़ी छलांग लगा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में भी कंप्यूटर को अनिवार्य करने की इच्छा व्यक्त की है। अब इसको हम पूरी तरह से विभागीय स्तर पर इसको व्यवस्थित करके और इसकी नोटिफिकेशन जारी करें।
0: राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को हाफ डे कक्षाएं संचालित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के समय में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। नए आदेश के अनुसार शनिवार को विद्यालय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक विद्यालयों का समय पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आज विधान परिषद सदस्य की शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें विधान पार्षद पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रकाश ने आभार प्रकट किया है।
2: सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी, भारत सरकार नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गठबंधन के तमाम नेताओं को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। उन्होंने जो विश्वास जताया और उस विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ जो जवाबदेही मिली है, उस जवाबदेही पर खड़ा उतरने के लिए और लोगों की सेवा आगे भी करते रहे।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। कल से ये समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी।
1: अगर बहुत भारत के प्रॉपर बायो एग्रो रिसोर्सेज यानी गांव में खेती के बाद में जो बायो मास बच जाता है या फिर जो हमारे कैटल है कैटल का काउ डंग है उसका यूज कर सकें, इस तरह की कई जो वेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं उनका अगर प्रॉपर यूज कर सकें और उससे गैस बना सकें तो देन इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैस टू बी जनरेटेड।
0: पटना नगर निगम समेत प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज नगर निकाय कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की और अधिकतर मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इस सकारात्मक बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है।
2: कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है और कुछ के लिए हमें राजमंत्री परिषद की स्वीकृति भी हमें लेनी पड़ेगी। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग का विमर्श हुआ है और उसको प्रसन्नता है कि सरकार के पॉजिटिव आश्वासन के बाद और एक सकारात्मक वार्ता के बाद उन्होंने अपने स्ट्राइक को।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मुंगेर के जमालपुर में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास सहित अन्य परिसरों में तलाशी की है। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि कंपनी पर निवेशकों को अधिक लाभ का झांसा देकर बड़ी राशि जुटाने

0: का आरोप है। कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया जिले में सबसे अधिक 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: औरंगाबाद जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज सोलर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। मेले में उपभोक्ताओं को आधुनिक सौर ऊर्जा समाधान और सोलर रूफटॉप सिस्टम समेत योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जहानाबाद जिले में हर घर तिरंगा अभियान के सफल और व्यापक क्रियान्वयन हेतु जिले की जीविका दीदियों द्वारा 26,200 राष्ट्रीय तिरंगों का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में ई शिक्षा कोष ऐप पर 73 शिक्षकों के ऑनलाइन अनुपस्थित रहने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए 24 घंटों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं जिले के लौरिया में पुलिस ने एक पिस्टल और अमेरिकी चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 6 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरे शहर में 10 करोड़ नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त भारत के निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई वीडियो को हटाने की चूक के लिए मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। बिहार में निवेश के लिए सरकार ने 10 कंपनियों के साथ किया समझौता। प्रस्तावित निवेश से 27,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद नगर निकाय की सफाई कर्मियों और चालकों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
1: राज्य में मॉनसून सक्रिय होने के बाद किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण महानंदा, कनकई, मैची, रतुआ, डोंक और रमजान नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सावन माह की पहली सोमवार पर जिले के मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भूतनाथ, गौशाला, शिव मंदिर, ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों ने श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं सिया समुदाय का चेहल्लुम का मातमी जुलूस भी जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रस्तावित एक्सप्रेस वे ठाकुरगंज, बहादुरगंज और तेरागंज प्रखंडों के 51 मौजा से होकर गुजरेगा। करीब 519 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पूरा होने से सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ यात्रा समय में भी कमी आने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई है। पोठिया प्रखंड में सीआईएस बटालियन के लिए 110 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई। वहीं ठाकुरगंज तथा कोचादावन बहादुरगंज क्षेत्र में सेना के बेस कैंप के लिए 390 एकड़ भूमि का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। इधर सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के उप महानिरीक्षक राजीव राणा ने ठाकुरगंज क्षेत्र में एसएसबी की सीमा चौकियों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की तथा जवानों को नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जारी रखने के निर्देश दिए। खगड़ा स्थित एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 5,45,00,000 रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी। रनवे विस्तार के बाद बड़े विमानों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे सीमांचल क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा पंचायत स्तर पर नियमित जन सहयोग शिविर आयोजित कर लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इसी कड़ी में पुठिया प्रखंड की 4 पंचायतों में आयोजित जन सहयोग शिविरों का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर अधिकारियों को शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर जिले में अपराध और तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कई संगीन मामलों का उद्भेदन किया गया। इस दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ, अवैध लॉटरी टिकट, मवेशी तथा अन्य सामान बरामद किया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 25,00,000 रुपए से अधिक का समन शुल्क भी वसूला गया। जिला सदर अस्पताल में अब गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। बीते दिनों अस्पताल में 2 वेंटिलेटर युक्त बेड सेवाओं के साथ 10 बेड वाले आधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इससे गंभीर मरीजों को जिले में ही समय पर गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा रेफरल की आवश्यकता कम होगी। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड की बंदरचूला पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकारी भवन का उद्घाटन किया गया। भवन शुरू होने से ग्रामीणों को कई प्रशासनिक सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। वहीं पोठिया प्रखंड की कोलथा, रायपुर, बुढ़नई और कुसियारी पंचायतों में जन सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन वितरण प्रणाली, बिजली और भूमि संबंधी मामलों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े शिकायतों का मौका पर ही निस्तारण किया गया। मोतिहारा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा विद्यालय की आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय की एमएससी की छात्रा कुमारी रूबी रानी ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की शोध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं चूड़ली स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवा काशीपुर में नव निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत विद्यार्थियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने समारोह स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, सुरक्षा, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
0: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, सुनिए फिल्म।

0: ये गाना है फिल्म नमक हलाल का। इसे लिखा है प्रकाश मेहरा और अनजान ने, संगीत बप्पी लहरी का। तो आइए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: Mm-hmm.

0: अजी सुनिए तो।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका।
2: में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे, इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न

मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब

देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के

इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवर अलू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, यह अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है, हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली

0: 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार। कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागतक संग हम छी माला झा। श्रोता लोकन, साहित्य एकटा एहन सशक्त माध्यम अछि जाहिसँ भाषा आ संस्कृति के संरक्षण होइत अछि, आ एहि संरक्षण में साहित्यकार लोकनिक योगदान अप्रतिम रहल अछि। जतय साहित्यकार लोकन अमूल्य योगदान दऽ रहल छथि, ओतहि आकाशवाणी दरभंगा अपन विविध कार्यक्रमक माध्यमे साहित्यिक प्रसार में वृद्धि कऽ रहल अछि। जेना कार्यक्रम सिंगरहारक माध्यमे आई एकटा एहन साहित्यकार के स्मरण कऽ रहल छी जिनक आई पुण्यतिथि छनि, जे अपने रचना सँ धूम केतु जकाँ आइयो अजर अमर भऽ के चमकि रहल छथि साहित्य जगत में। ओ पुण्यात्मा धूम केतु नामहि सँ जानल जाइत छला। मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक अत्यंत सशक्त आ प्रभावशाली रचनाकार में आबि मैथिली गद्य के आधुनिक संवेदना आ सामाजिक यथार्थ सँ जोड़ि एकटा नव परिचय देलनि। हिनक खिस्सा पिहानी वा कथा में मिथिलांचलक ग्रामीण जीवनक सजीव चित्रण, आम जनक संघर्ष आ आधुनिक मानसिकताक विशिष्ट छाप परिलक्षित होइत अछि। कतेको प्रसिद्ध एकांकी आ लघु कथा के सेहो रचना केलनि, जे विभिन्न पत्र पत्रिका में खूब पसीन कयल गेल छल। धूमकेतु जी के योगदान गद्य साहित्यक संग संग पद्य में सेहो रहल। हुनक काव्य सँ रचना में व्यंग्य, संवेदनशीलता आ समाजक वंचित वर्गक प्रति विशिष्ट सहानुभूति।

देखबा में अबैत अछि। हुनक शैली यथार्थवाद रहन। मैथिली साहित्य के भावुकता पर पारंपरिक रूप से बाहर आनि आधुनिक यथार्थवादी धारा से जोड़ के रखलन। हुनक रचनात्मक शैली खूब प्रभावशाली, सरल आ जनभाषाक लगीच छल। ऐसा आम जन धरि हुनक रचना पहुँच जाइत छल आ लोक आसानी से रचना पढ़ि पबैत छलन। 2000 ईस्वी में औजके दिन हुनक निधन भ गेल छल। साहित्यक ओहि धूमकेतु के शत शत नमन।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

सुनि रहल छलहुँ ई गीत। आइ स्मरण कऽ रहल छियनि धूमकेतुजीके। मैथिलीमे थोर लिखके विशेष प्रतिष्ठा अर्जित केनिहार गनल गुथल साहित्यकारमे धूमकेतु अबैत छथि। ओ अपन सीमित कथा कविताक बल पर ओकर उच्च मूल्य वक्ताक कारणे सातम दशकक प्रतिनिधि साहित्यकारक पाँतिमे प्रतिष्ठित भऽ गेलाह। कथा आ कविता दुनूमे ई अधुनातन शिल्पमे विलक्षण रचना कौशलक परिचय देने छथि। पोथीक रूपमे अगुरबान आ अन्य कथा 1980 छपलनि, जाहिमे हिनक 9 प्रसिद्ध कथा संग्रहित अछि। उपन्यास मोर पर निधनक बाद 2000 एलनि। हिनक उपलब्ध समस्त 34 कथाक संग्रह उद्यास्त नामसँ 2003 प्रकाशित भेल छल। रमानाथ झा जतेक मान हिनका कथाकारमे देने छलखिन ओतेक कविता रचनामे नहि, मुदा तैयो हिनक काव्य संख्यामे कम रहितो महत्वपूर्ण आ श्रेष्ठ स्थान प्राप्त केने अछि। धूमकेतुक कथा नवीन भावबोधक सृष्टि करै छै, कथा तत्वक उच्च मूल्य प्रतिष्ठापन करैत अछि, अभिव्यक्तिक अनुपम सौन्दर्यताक दर्शन करबैत अछि। हिनक कथा विशिष्ट बनि जाइत अछि, तकर कारण अछि कथ्यक टटका संस्पर्श आ शिल्पक अनुपम सौन्दर्य। भाषा पर हिनक अद्भुत अधिकार छलनि। पात्रानुरूप भाषाक प्रयोग ठेठ मैथिलीक सुच्चा अभिव्यक्ति वातावरणक प्रभावकारी निर्माण जेहन हिनक कथामे भेटैत अछि से आन ठाम बिरले भेटत। ओ स्वयं स्वीकार केने छथि जाहिमे हुनक वक्तव्य छनि, बाह्य जीवनमे जे किछु घटित भऽ रहल अछि, दैनन्दिन अखबारी घटनाखण्ड, सामाजिक क्रेज आकि राजनीतिक दाव पेच, ताहि सबके हम जीवन नहि मानैत छी। जीवनक विस्तार भीतर छैक, जतय निरंतर गहनतम संघर्ष चलित रहैत छैक। मनुखक व्याह संघर्षपूर्ण अंतस स्वयंसँ लड़बाक सनातन युद्ध क्षेत्र हमर सृजनक भूमि थिक। जखन जखन व्यक्ति आ करिक्का छाया ताल ठोकिकऽ आमने सामने ठाढ़ भऽ जाइत अछि, जखन जखन झूठ सत्यके बलात् झाँपर लगैत अछि, तँ हमर खिस्साक शिरोदय होइत अछि। एहनमे अगुरवानके उदा

0: भरण लॉ सकै छी। कथा शिल्पिक अनुपम विशेषते अछि जे कथाक दयनीय चरित्र कोनो दया नहि उपजबैत अछि। आ तिरस्कृत चरित्र जघन्य काज करितो पाठकक सहज सहानुभूति पाबि लैत अछि। चरित्र जे कथा में ठार होइत अछि आ वातावरण जे चरित्र के ठार करैत अछि, दुनू मिल के कथा के अद्भुत दमगर बना दैत छैक। आई कथा आ कथाकार के विशेष रूप से चर्चा कऽ रहल छी तऽ अपनो लोकनि सुनै छी एकटा कथा जेकर नामे अछि अद्भुत।
1: रामबचन स्कूल मास्टर छथि, अपन नियमक पक्का, ससमय स्कूल जेता आ औता। अहाँ घड़ी मिला सकै छी, अहाँ कहब जे आप घड़ी कै गोटे पहिरैए तो मोबाइलक फोनक टाइम मिला सकै छी। अहाँ कहब जे मोबाइल फोन अपने समय सेट कऽ दै छै, तखन अहाँ हमर गप मानू जे हम कहै छी। से रामबचन जी के जहिया स्कूल में छुट्टी रहे छनि तहिया समय काटब पहाड़ भऽ जाइ छनि। पत्नी आई मात्र छथि घर में, बेटा बाहर छनि, ककरा से गप करता। पत्नी के भोर से आश्रमी काजक करे के व्यस्तता रहै छनि, भानस भऽ जेतनि तऽ हिनका भोजन करा देथिन। ओहि समय में जे ई दू टुप्पी गप करत तो ठीक, फेर ओती आ टीवी खोलती, दूटा सीरियल देखती। ओहि समय में जे रामबचन जी किछु गप हुनका कहथिन तो खोजा जैती, तो रामबचन जी चुपे रहै छथि, ई सीरियल कथा बुझितो नहि छथिन। समयक बहुत पाछुक सोच, तखन फेर नवका टिप टॉप, हिनका किछु बुझाइते नहि छनि, की करता। ई दोसर कोठरी जा कोनो पढ़ले पोथी उन्टाबे लगै छथि, पत्नी सीरियल देख सुति रहै छथिन। हिनका दिन में नींद नहि होइ छनि, ओह छुट्टीक दिनक समय बड़ भयावह होइ छनि हिनका लेल। अहाँ कहब ककरो ओहिठाम किएक नहि चलि जाइ छथि, गप सप करता, समय बितौता, कतौ जेता। गाम में केओ दलान पर नहि रहै छै, शोर करियौ तखन ओ व्यक्ति औता, एक दूटा गप पूछ अपने मोबाइल में लागि जेता। तखन रामबचन जी गप की करता, किछुए काल में ओतऽ से पर आइ छथि। अहाँ कहब जे इहो किया नहि मोबाइल में लागल रहै छथि, तकर उत्तर इएह जे हिनका मोबाइल में मने नहि लगै छनि। से रामबचन जी के किछु दिन से एकटा व्यक्ति कौतूहलक विषय भऽ गेल छनि। जखन ई स्कूल से छुटै छथि तऽ जाहि रास्ते ही अपन स्कूटी से अबै छथि, ओहि रास्ता में रखबारी गामक बाद एकटा कलम बाग छै, ओहि से सटले एकटा तीन मुहानी रास्ता छै। दूटा रास्ता बड़ चलनसार, तेसर पर कम आवाजाही। ओहि तीनू मुहान से दू लग्गा दूर कम आवाजाही रास्ता पर एकटा पुलिया छै, ओहि पर देखै छथिन एकटा बूढ़ा के बैसल से बहुत दिन से, ठीक ओहि समय में जखन ई रामबचन ओतऽ अबै छथि से ओ बूढ़ा असगरे बैसल रहैत छथि। रामबचन के पहले एक दू दिन भेलनि जे ओ ककरो प्रतीक्षा कऽ रहल हेता, किन्तु सब दिन कतौ प्रतीक्षे करथिन, मन होइन जे ई असगरे की करै छथि। फेर भेलनि जे भऽ सकैए समय बितबैत होता, मुदा सब दिन एते किया बैसै छथि। एक दिन इच्छा भेलनि जे इहो तऽ कने काल बैस ओहि बूढ़ा के पूछथि, आ इच्छा प्रबल होइत गेलनि। से एक दिन अपन स्कूटी ठाढ़ कऽ ओतय बैस गेला आ दुनू हाथ जोड़ कहलथिन, प्रणाम, आहा खूब नीके रहू, कतऽ रहै छी अहाँ। हमर घर तऽ भेल महरैल, मुदा हम रखबारी से ओहि भाग मुजोना हाई स्कूल में शिक्षक छी, नाम अछि रामबचन मंडल। ओ तैं देखै छी अहाँ के सब दिन अबैत, आ अपने हमर नाम लोक कहैए प्रताप झा, अपने के देखै छी सब दिन एहिठाम एकांत में बैसल। रामबचन जी गप पर हंसय लगला प्रताप झा, हसैत हसैत आँखि में नोर आबि गेल, हसैत कए गोटे आँखि में नोर आबि जाइ छै। से रामबचन जी के पहिने भेलनि सैह नोर छनि, कि बाद में बुझलनि जो ओ तक कानऽ लागल छलाह। तखन चकेला रामबचन, मन में भेलनि कहीं मात तऽ नहि गड़बड़ छनि, आब की करी से सोचे रहल छलाह। ताबत ओ प्रताप झा अपन गमछा से नोर पोछ कहऽ लगलथिन, की कहू रामबचन जी, आइ एक साल से हम एहिठाम बैसै छी, आइ तक क्यो नहि पुछलक जे हम असगरे एहिठाम किया बैसल रहै छी, जेना आब ककरो से ककरो कोनो मतलब नहि। आइ पहिल दिन अहाँ पुछलहुँ तैं अहाँ से अपनत्वक बोध भेल आ कना गेल। अहाँके भेल जे की भेलनि? हाँ से भेल, हमरा भेल जे अपनेके हमरा बात से कहूँ दुख तऽ नहि भेल? नहि बउआ, दुख किया हैत, आनंद भेल। हमरा मन में ई भऽ गेल छल जे आब एहि धरा पर मनुखक दरेग नहि बचल छै, ककरो कोनो मतलब नहि, जे के कतौ अछि से नहि, एखनो मनुख अछि,

दोसरा खोज रखनिहार लोक अछि। रामवचन हंसला। ओ हंसैत कहलथिन, कैक दिन सँ होइत रहे अहाँ सँ पूछी, मुदा इएह जे अहाँके भेल हैत कहीं बता तता नहि होइ। नहि तऽ सुनू, हम तऽ अपन नाम तऽ पहिने कहि देलहुँ, हम डाक विभागमे डाकपिन रही। पहिने बड़ चिट्ठी पत्री अबै, मनी ऑर्डर अबै, भरि दिन डाक लेबामे आ ओकरा बटबामे व्यस्त रहै छलहुँ। गामक लोकक जेना हम अपन लोक रही, हमरा लगै छल एहि संसारमे डाकपुन सन नौकरी ककरो नहि। जे कनिया मनिया अनका समक्ष मुख झपने रहै छल, ओहो हमरा से एना गप करै छल जेना ओकर नैहरक लोक होइ। बुढ़वा बुढ़िया बेटा रहिए, बुझू सभक समांग रहिए। आब तऽ अपनो गामक पोस्ट ऑफिसक डाकपुन के लोक चिन्हैत हेतै कि नहि से नहि कहि कहि चुप भऽ गेला प्रताप झा। रामबचन हुनक गप सुनैत बजला, हाँ आब तऽ फोन चिट्ठी के आ बैंक मनी ऑर्डर के बंद कऽ देलकै। जेना अतीत से वर्तमान में अबैत ओ बुढ़ा प्रताप झा दीर्घ निश्वास लैत कहलथिन, की कहू, सभक जिंदगीक तीत मधुरक खिस्सा होइ छै, हमरो छल से सब की कहू। हमरा दूटा बालक, दुनू छोटे रहथि तखने हुनका लोकनिक माय एहि धराधाम के छोड़ चल गेलथिन। हम दुनू के कंठ लगा के रखलहुँ, पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, दुनू आब अमेरिका में रहै छथि, हमरो लऽ जा चाहलनि, किंतु हमरा कतौ आनठाम नीक लागै, आनठाम जाय में डर होइए, सेहो तऽ नहि अपन भाषा नहि अपन माटि, कहैत फेर चुप भऽ गेलाह। कने काल रामबचन हुनक मुँह तकैत रहलथिन आ प्रतीक्षा करैत रहला जे किछु कहथिन, मुदा बुढ़ा गुम जेना कतौ बौआ रहल छलाह। आब हिनका मनमे भेलनि जे इएह किछु पूछथि, किंतु जाबत ई किछु पूछथि तबत वएह कहय लगला, की कहू, अहाँके गप कहैत पत्नी मन पड़ि गेल छली, फेर मन पड़ि गेला बौआ सब, भेल जे कना न जाय अहाँ फेर डरा न जाय, कही करुण हंसी हंसय लगला प्रताप झा। रामबचन सेहो कने द्रवित भेला, बुढ़ाक मुँह ठकान देख कने काल चुप रहला, मुदा पुनः कहय लगला, आ अहाँक जिज्ञासाक ठकान अछि हमरा, कहै छी अहाँके समय के अभाव तऽ नहि अछि? नहि नहि, कहल जाय। रामबचन संयमित होइत कहलथिन, हमरा आब 22 बरख भऽ गेल रिटायर केना, नौकरी में 2-3 बरख कम देल गेल रहै, एखन हमरा 83 से ऊपर भेल, किंतु हाथ पैर एखन ठीक अछि, पेंशन भेटैए, अपने बनबै छी आ खाइ छी, आर हमरा कोनो दुख नहि अछि। एकटा बुझलहुँ रामबचन बाबू, झंझारपुर में रहे एकटा घोष बाबू, हेमोपैथिक डॉक्टर रहे, बड़ सटीक इलाज करे। बाद में ओकर बेटा मुन्नू बाबू एले, ओ कहे जे मुन्नू बाबू हमरा से नीक डॉक्टर है। क्या बुझलिए, एहि दुआरे जे मुन्नू बाबू के चलती हुए, लेकिन एकदम झूठ, सरासर झूठ, घोष बाबू सन मुन्ना बाबू कत से। बाद में घोष बाबू के हम देखिए कागज पर असगरे चीज पारित, पत्नी मर गेल रहे, केओ ओकरा से गप नहीं करे, आ एक कोण में ओकर डेरा रहे, हम लेकिन उम्हर जाए। तकर कारण रहे जे मुन्ना बाबू के पोस्ट ऑफिस से बड़ चीज अबे, चिट्ठी पत्री पार्सल, से हम जाइए देव तो घोष बाबू के भेंट कर लिए। से एक दिन हम पूछलिए घोष बाबू से, डॉक्टर बाबू कागज पर ई की करे छे? ओ कहलक चित्र बनबै छी। हम पूछलिए कोन वस्तुक चित्र? ओ कहलक जीवन जीवाक। हम तो ओहि दिन में ओकर गप नहीं बुझलिए, मुदा कने मने आब अर्थ लगैए। तो सुनू रामबचन बाबू, हमरा गाम में आब एकोटा लोक नहीं अछि। रामबचन अकचकेला, अपने गाम में एकोटा लोक नहीं अछि? रामबचन गप पर हंसय लगला प्रताप झा आ कहलनि, की कहू, जाहि लोक सबके मात्र अपने से काज होय, अपने से मतलब होय, ओ लोक भेलै। हम 9 क्लास तक पढ़ने छी, हमरा सबके हाई स्कूल में एकटा दया बाबू मास्टर रहथिन, ओ कहथिन समाज अध्ययन पढ़वे काल मनुख सामाजिक प्राणी थिक, मुदा आइ हम पूछै छी मनुष्य आ पशु में की अंतर? हम प्रश्न करे जाय तऽ अहाँ कहब जे मनुष्यक परिभाषा आब बदलऽ पड़त, पशु अपन सुविधा जोगार नहि कऽ सकैए आ मनुख। कहि चुप भऽ गेला प्रताप झा। हाँ से तऽ भऽ गेलैए, एक तऽ गाम में कम लोक रहैए, जेहो रहैए से आत्म केन्द्रित, एकटा की कहू ई मोबाइल फोन तऽ आर लोक के असगर बना देलकैए। रामबचन मंडल गप संग जना वेदना के व्यक्त कयलनि, की कहू मास्टर साहब, हम बूढ़ भेलहुँ तऽ दूर गेलहुँ, हम जे ककरो किछु पुछबै तऽ तेना भड़कत जेना तनल छत्ता देख माल जाल भड़क जाइए, तथापि हमरा लोक नीक लगैए, क्यों हमरा से नहीं बाजत? नहीं बाजत, मुदा हमरा देखबा से तो क्यों नहीं रोक सकैए, की रामबचन बाबू? न से क्या रोकत? हाँ इएह, मुदा एकटा बात कहू,
की।

जँ हम अहाँ के ई कह दी जे हम एत किया बैसे छी, फिर हमरा लग अहाँ तक कहियो नहि आयब। कई हंसऽ लगला प्रताप झा, नहीं नहीं हम अबैत रहब। ओना हम बुझ गेलहुँ अपने के एहिठाम बैसबाक वजह, एकदम बुझ गेल हैब। ओना हमरो से सुनू, हम एत बैसल बैसल रंग बिरंगक लोक के देखै छी अबैत जायत, मन जुड़ा जाइए। साँझ में अगर विदा होइ छी तो मन एकदम प्रसन्न रहैए। एखन मने आब अहूँ अपन जीवन जीबाक स्थिति के ताकि लेलहुँ, जना घोष बाबू तकने छला। रामवचन मंडल गप पर खूब आनंद से जोर से हंसला प्रताप झा, हा हा हा, एकदम ठीक, एकदम ठीक, अद्भुत।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अद्भुत शब्द वास्तव में बड़ महत्वक है, जेना भोलानाथ झा धूमकेतु के कथा में चरित्र आ वातावरण दुनू मिल के कथा के अद्भुत दमगर बना दे छै। अगुरवान के मैथिलीक श्रेष्ठतम 5-7 कथा में गौनल जा सकैत अछि। हिनक कविताक प्रसंग में रमनाथ झाक मंतव्य छनि, हिनक कविता पूर्ण मौलिक भाव चित्रण प्रस्तुत करैत अछि। विषय के प्रभावपूर्ण रीति सँ प्रस्तुत करब हिनक कविताक प्रमुख विशेषता थिक, जकर केंद्र में निहित रहैत अछि युग चेतना। ई विशेषता हिनक प्रकृति विषयक रचनाओ मध्य स्पष्ट रहैत अछि। एहने छलाह भोलानाथ झा धूमकेतु, जे अपन अनमोल रचना सँ साहित्य जगत में चमकैत रहैत छथि। ओहि पुण्यात्मा के पुनः शत शत नमन।

कार्यक्रम के अंत में सुने छी शब्द विमर्श। एक शब्द अक्षैत। धूमकेतु के रचना पारंपरिक विषयक अक्षैतो नव स्वाद देत अछि। अक्षैत माने रहितो। एक शब्द बिरले। धूमकेतु के रचना में जतेक मौलिकता भेटित अछि से आन ठाम बिरले देखबा में भेटत, माने नगण्य, बड कम वा भेट सके। यह शब्द विमर्शक संग अब अपने लोकन से चाहे छी आज्ञा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने ही को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और

0: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
0: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बहारा चारियाली यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

0: प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेब बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेब बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल

0: स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपये पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरला में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni 4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है
4: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस टू द नेशनल GDP एंड जनरेट नियरली 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री
3: अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम
2: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam.
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है आसाम में.
4: टुडेज सेकंड मेजर डिसीजन इज रिलेटेड टू एन इम्पोर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट इन आसाम. इट इज द बायहाता चरियाली तेजपुर फोर लेन हाईवे.

0: चरियाली से तेजपुर तक 4 लेन का हाईवे तामीर करने की भी मंजूरी दी। इसकी मजमुई प्रोजेक्ट लंबाई 135.87 किलोमीटर होगी और इस पर 8,970 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT टूल मोड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर एक हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फजाइया के साथ तालमेल से हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है असम में एक हाईवे पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन स्कीम को मंजूरी देने का काबीना का फैसला माहौलियात के लिए साजगार, तवानाई, देही खुशहाली और खुद कफील मुल्क बनने के भारत के इज्तिमाई ख्वाब को हकीकत का रंग देने की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि स्कीम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को वसी तौर पर फरोग देगी, जिसका मकसद अंदरून मुल्क CBG की पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि NH-15 का 4 लेन वाला गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सफर के वक्त को कम करेगा, सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर अहम बाईपासिस पर होने वाले गाड़ियों की आमदोरफ्त को बेहतर करेगा। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आरई के बाइस दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत सरमाही इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 ऐवान में गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया। ताहम मुसलसल हंगामा आरई के दरमियान मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने से मुतालिक इस बिल को किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सांध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे कबल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। पार्लियामेंट ने तसरुफात नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल राज्यसभा में बहस के बाद लोकसभा वापस भेज दिया गया था। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर दोबारा शुरू हुई तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बिल पर गौर करने और उसे वापस करने के लिए इसे ऐवान में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2003 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बहुत सी खदशात पर होने वाले उन अखराजात के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से रकम के तसरुफ का इख्तियार देता है जो उस साल उन खिदमात के लिए मुख्तस रकम से तजावज कर गए थे। हुकूमत ने बहुत से तजावज करदा अखराजात को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की दरखास्त की है। ये रकम कर्जों की अदायगी पर खर्च की जाएगी। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने माली साल 2023 के दौरान होने वाले तजावज करदा अखराजात की मंजूरी की दरखास्त की है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक अराकीन के जरिए जाहिर करदा तश्वीश का हवाला देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने 2019 में दफा 370 को खत्म करने के बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को नुमाया माली और इंतजामी मदद फराहम की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाहें और पेंशन मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के जरिए अदा की जा रही है, जिन पर सालाना तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि दफा 370 को खत्म करना इस बात का यादा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को पूरी करने के बाद चेयर जनाब घनश्याम तिवारी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें

0: आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हमनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज भारत इसराइल खुसूसी जामे शराकत दारी में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का यादा किया। जनाब नेतन्याहू ने आज जनाब मोदी को टेलीफोन कॉल की थी। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आज भारत ने उड़ीसा में चांदीपुर की मरबूत आजमाइशी रेंज से दरमियानी दूरी तक वॉर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की कामयाब आजमाइश की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। ये आजमाइश जामे फोर्सेज कमान के तहत की गई। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि मुल्क में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा उठाने वाले कुंभों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई है। नई दिल्ली में मुनाकिदा CII बैन अल-अक़वामी तवानाई कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 19 लाख घरानों का बिजली का बिल सिफर आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा कुंभों ने इजाफी बिजली फरोख्त करके मजमूई तौर पर 421 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सिर्फ 9 महीने में छतों पर सोलर पैनल नस्ब करने की रफ्तार में 3.2 गुना का इजाफा हुआ है, जो अक्टूबर 2025 में योमिया तकरीबन 5,000 तनसीबात से बढ़कर जुलाई 2026 में 16,000 से ज्यादा योमिया तनसीबात तक पहुंच गई हैं। इस मौके पर स्टील और भारी सनतों के मरकजी वजीर SD कुमारस्वामी ने कहा कि आलमी तवानाई मुंतकली में क्यादत के लिए भारत को मजबूत और पायदार सप्लाई चेन कायम करना होगी। उन्होंने कहा कि स्टील की पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क की हैसियत से भारत न सिर्फ बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की अपनी बढ़ती जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, बल्कि पायदार स्टील की बढ़ती हुई आलमी मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने फर्जी या मनगढ़ंत मालूमात जमा कराने वाले दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अदविया से मुतालिक जवाबित में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि इथेनॉल और हवाई जहाज का पायदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया सकता। उन्होंने कहा कि SAF बैन अल-अक़वामी सतह पर एक तस्दीक शुदा हवाई जहाज का ईंधन है जिसे बैन अल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम तस्लीम करती है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन सख्त जाँच के मराहिल से गुजरता है और आलमी हिफाजती मेयारात पर खरा उतरता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हवाबाजी की हिफाजत से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने से सिर्फ फजाई मुसाफिरों में गैर जरूरी तशवीश पैदा होती है। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73,00,000 ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत में इस वक्त तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तहान में मुबैना बेजाबदगियों के मामले पर मानसून इजलास के पहले दिन असम्बली के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा की तहरीक और इम्तिहान के निजाम में ज्यादा शफाफियत के मुतालबे ने फैसला कुन मरहला अख्तियार कर लिया है। तातुल खत्म करने के लिए रियासती सरकार ने इकदाम शुरू किए हैं। वजीर आला हेमंत सोरेन की हिदायत पर 4 वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत करेगी। इसके जवाब में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे तलबा ने 8 रुकनी वफद तश्कील दिया है जो वजरा के साथ होने वाली बातचीत में उनकी नुमाइंदगी करेगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: केरल में युवा मोर्चा की क्यादत में तिरुवनंतपुरम में वाकई रियासती सेक्रेटरियट की जानिब एक बड़ा

0: आप सुन रहे थे क्रमशः चाचा जिंदाबाद, आओ प्यार करें, आसमान, गैम्बलर, घूंघट, छोटी बहू, राजहट और अनपढ़ फिल्म के गाने। आवाज़ें थीं क्रमशः लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, राजकुमारी और मुकेश की। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण, प्रेम धवन, नीरज, शकील बदायूनी, कैफी आज़मी, हसरत जयपुरी और राजा मेहदी अली ख़ान की थी तथा संगीतकार थे मदन मोहन, उषा खन्ना, ओपी नैयर, एसडी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और शंकर जयकिशन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत।

0: निष्कर्ष है, वसंत वैभव दहा दिशांना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हिड़ाऊ ने।
1: हियर इज द फर्स्ट गीत, वसंत वैभव दहा दिशांना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हिड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटिस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप तेवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedaup.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थीं भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी नागपुर। द प्रोग्राम कंटिन्यूज, लेट अस लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
2: ये आकाशवाणी है, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: दिस इज आकाशवाणी। In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
2: Sukhvinder Singh, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में दो दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक

0: आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
1: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब। विद टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
0: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाए मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
1: The central theme of this kafi revolves around divine love, unwavering devotion, and spiritual union. Heer's refusal to accept the kheedas symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमयी रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: This is a mystical Sufi composition attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakenings.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंघ गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: This song, lyricized by Dev Haryanvi, is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never comes.

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla Charan, sarangi Sukhvinder Singh, keyboard Pankaj, flute Gurdeep Singh and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आपने जो है भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और

0: मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू द national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders reviewed sustained progress in India-Israel Special Strategic Partnership and reaffirmed their commitment to further strengthening the bilateral cooperation across various sectors for the mutual benefit of the two countries. Both the leaders also exchanged views on the recent developments in West Asia. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day tomorrow with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, the Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economic

0: movement launched on the same day in 1905. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has debunked the claim stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. He said ethanol and sustainable aviation fuel are entirely different and should not be conflated. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर. इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है. इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद.